ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। खुश होता हूँ आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। खुश होता हूँ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

92.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह तोहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहा सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन दी।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है? हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हों।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
17: गजब बेइज्जती है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
7: पता है, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त

0: क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
1: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
2: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
3: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
2: हाँ बोलो।
3: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
2: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
3: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
0: गजब बेइज्जती है।

सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस प्यारी सी सुबह में श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में, इस उम्मीद के साथ कि हमारे श्रोताओं ने भी अपने अपने रेडियो सेट ऑन कर लिए होंगे, क्योंकि सभी का इंतज़ार रहता है कि अरे देखिए आज कौन सा दोस्त हमसे मिलने आया है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन हर बार अलग अलग आते हैं आपसे मिलने के लिए, और ये सारी जानकारियाँ भी आपके साथ साझा हम करते हैं श्रोताओं। तो जानकारियों का सिलसिला भी शुरू करेंगे, उससे पहले कार्यक्रम में आप सभी का करवा देते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से पहले गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो कहते हैं दिल में लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं तो कुछ लोगों से ज़िंदगी बदल जाती है। बिल्कुल, कहने वाले ने बिल्कुल सच कहा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं जिनसे मिलकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। दुनियादारी सीखी जाती है या करियर के बारे में शिक्षा हम ग्रहण करते हैं या पढ़ते हुए हम उनसे शिक्षा लेते हैं, और भी बहुत सारी होती हैं बातें जो हम उनसे सीखते हैं। तो वही बात आ गई कि मिलकर हम कुछ लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं तो कुछ लोगों के मिलने से हमारी ज़िंदगी जो है टोटली बदल जाती है। कुछ अच्छे तरीके से बदलती है, कुछ बुरे तरीके से बदल जाती है। ज़िंदगी का सफ़र श्रोताओं इसी तरह से होता है, लेकिन सफ़र जैसा भी हो हमें हंसते मुस्कुराते जीना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल कार्यक्रम में हमें भी आगे बढ़ना है और आप सभी को सुनवाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापिस आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी आप तक पहुंचानी है, बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करनी है और बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाना है। तो गीतों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले कुछ जानकारियां आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो श्रोताओं, आज के दिन की हम बात करें तो आज है 26 जून, और 26 जून का दिन इतिहास में बहुत सारी घटनाओं को लिए हुए आता है। 1945 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और 1974 में सुपरमार्केट्स में उत्पादों की कीमतें जांचने के लिए पहली बार बारकोड का इस्तेमाल किया गया था। सन 1975 की और थोड़ा सा आगे बढ़े तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फारुकद्दीन अली अहमद ने देश के आपातकाल की घोषणा की थी, और 2000 में वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मानव जीमोन के प्रारूप को पूरा करने की भी घोषणा की थी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियां अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ आप सुनते हैं।

0: तेजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इसे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। चंबा जिला में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले सड़क सुविधा से वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत जिला चंबा के लिए लगभग 551 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे सड़क निर्माण के कार्य संपन्न होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन गांवों को सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
1: जिला चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 551 करोड़ रुपए की राशि वाली स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। शेष 4 सड़कों के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां लोगों का घर द्वार तक सड़क निर्माण का सपना पूरा किया है, वहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदल कर रखती है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा कल निर्मंड स्थित डे केयर सेंटर में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि रेडक्रॉस बिना किसी भेदभाव के संकटग्रस्त असहाय व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान लगभग 80 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के दृष्टिगत धर्मशाला शहर के कोतवाली बाजार गांधी पार्क से काला पुल होते हुए बाईपास जंक्शन तक सड़क को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर 27 जून तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि के दौरान वाहनों का संचालन खड़ा डंडा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 503 धर्मशाला बाईपास पर किया जा सकता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। ये क्विज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इसे देश भर में चलाए जाने वाले विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वास्थ्य और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर आज प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में ऊना जिले में भी नशे के विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नशे के खिलाफ शपथ लेकर समाज से चिट्टे व अन्य मादक पदार्थों के उन्मूलन का सामूहिक संकल्प लेंगे। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पौत्र हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक शहर में नाहन में मुहर्रम पर 2 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शिरकत करते हैं। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि देर रात शहर के गुन्नू घाट में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां तैयार किए गए ताजिए के दर्शन करने पहुंचे, जहां मरसिए पढ़कर इमाम हुसैन सहित कर्बला के अन्य शहीदों को याद किया गया। नाहन में मुहर्रम के लिए विशेष रूप से शहर में 4 ताजिए तैयार किए जाते हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे शहर के अलग अलग हिस्सों में ये ताजिए निकलने शुरू हो जाएंगे। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारी 4 साल की सेवा पर ग्रेड पे के हकदार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 माह में एरियर देने का दिया आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब डिपो में QR कोड स्कैन करने पर मिलेगा राशन। पंजाब केसरी का शीर्षक है, कसौली की 5 पंचायतों की महिलाओं को 1500-1500 रुपए देने की घोषणा। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, 2.5 साल से ज्यादा कार्यकाल वाले DC और SDM बदले जाएंगे। हिमाचल दस्तक बकौल मुख्यमंत्री लिखता है, भाजपा के 4 सांसद दिल्ली में हिमाचल की पैरवी करने से डरते हैं। HRTC ड्राइवर कंडक्टर भर्ती से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है, युवाओं ने 1 बजे फार्म भरे, 3 बजे टेस्ट, 5 बजे चयन और रात 8 बजे प्रबंधन ने कहा जरूरत पर बुलाएंगे। मौसम पर पंजाब केसरी का कहना है, हिमाचल प्रदेश में जल्द दस्तक देगा मानसून। अमर उजाला लिखता है, शिमला में बरसे बादल, आज 7 जिलों में बारिश, अंधड़ का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ सोलनी मेला आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे विधिवत शुभारंभ। चंबा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के लिए 551 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। और आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आशुराए मुहर्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

इसी गूंज के साथ शोधों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी हम आपके साथ साझा करेंगे। उन आज की बात कर रहे थे श्रोताओं, यानी 26 जून की, तो 26 जून के इतिहास में भारत के बांग्लादेश के बीच में तीसरा जल बंटवारे और 3 बीघा गलियारा को 999 वर्षों के बांग्लादेश को पट्टे पर देने में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इसके साथ साथ बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पूर्ण सदस्यता मिली थी और उसे टेस्ट खेलने वाले देशों का दर्जा भी दिया गया था। श्रोताओं, आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस भी मना रहे हैं। हर साल 26 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ श्रोताओं, आज के दिन में जन्मे व्यक्तियों की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महान उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। अर्जुन कपूर की बात करें तो भारतीय बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो विजन।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोतो, आज के दिन को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, यानी मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं। और इस दिवस को हर साल 2026 में भी मनाया जा रहा है, उससे पहले भी मनाया जाता था, और हर साल आज के दिन यानी 26 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत के गंभीर खतरे, शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव और साथ ही साथ अवैध तस्करी के जोखिमों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ श्रोताओं, इसके इतिहास की और थोड़ी सी हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर सन 1987 को इस प्रस्ताव को पारित कर हर साल 26 जून को इसे मनाने का फैसला लिया था। इसका उद्देश्य दुनिया को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त करवाना है, और साथ ही साथ जो है जो लोग नशा छोड़ने वाले हैं उनके प्रति समाज में सहानुभूति व पुनर्वास की भावना को भी बढ़ाना है। नशे के बहुत सारे श्रोताओं दुष्प्रभाव हमारे सामने आते हैं। नशा सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के पूरे जीवन और उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, यानी कि व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। शारीरिक नुकसान की श्रोताओ बात करें तो कैंसर, लीवर का ख़राब होना और हृदय रोग का ख़तरा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ मानसिक रोगों की और थोड़ा सा बात करें तो मानसिक अवसाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें हमारी स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता का खत्म होना भी स्वाभाविक होता है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। इस गीत को हमने लिया है जुदाई फिल्म से।

तो इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ड्रग अब्यूज डे की हम बात कर रहे थे। इसे मनाने का मकसद लोगों को नशे से होने वाले खतरों के बारे में बताना है, साथ ही साथ अवैध दवा व्यापारियों के जोखिम के बारे में भी जागरूक करना है। और आजकल आप सभी ने देखा होगा कि हमारे युवा नशे में धुत रहते हैं। नशा किसी भी प्रकार का हो, शराब हो, ड्रग्स हो, गांजा हो और हीरोइन, कई तरह के नशे आजकल के समय में चल रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी इस नशे की ओर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें जागरूक करना है और इस नशे से बचाना भी है। और कुछ पल के लिए तो इन लोगों को, यानी हमारी युवा पीढ़ी जो नशे में डूब चुकी है, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये नशा जो है उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है और बहुत सारी परेशानी और दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो श्रोता, इन चीज़ों से हमें बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और साथ ही साथ नशीली दवाओं के गैरकानूनी इस्तेमाल और अवैध तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की बात कही गई है। पहली बार ये दिन सन 1989 में मनाया गया था, इसके बाद हर साल इस दिन को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के दिन की थीम की भी हम बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोता, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे नशे के बारे में। नशा एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से खोखला कर देता है। और आज के समय में नशे की गिरफ्त में केवल व्यस्क नहीं है बल्कि युवा और किशोर भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल है। ये समस्या किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, साथ ही साथ इसमें पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र भी प्रभावित होता है। श्रोताओ, नशे की लत के कारण लोग अक्सर तनाव, व्यक्तिगत समस्याओं, मानसिक और मानसिक अवसाद से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। इसके अलावा बुरी संगत और साथियों का दबाव भी युवाओं को नशे की ओर धकेलता है। युवा नशे की ओर बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग केवल शौक के तौर पर नशा शुरू कर देते हैं, लेकिन नशे से उनकी ज़िंदगी ही पूरी बदल जाती है। बहुत सारे रोग तकलीफ़ें उनके शरीर में भर जाती हैं जिससे केवल वही परेशान नहीं होते हैं, पूरा परिवार उनका परेशान रहता है, उसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव श्रोताओं नशे के कारण होते हैं। इससे सबसे पहले तो शारीरिक नुकसान होता है, लीवर, फेफड़े, मस्तिष्क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है और जानलेवा बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो साथ ही साथ श्रोताओं सामाजिक और आर्थिक तबाही भी होती है। नशे के कारण परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं और अपराधों में भी वृद्धि होती है। और मानसिक रूप से बर्बादी की पहले हमने बात की, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति अवसाद में भी चला जाता है। तो श्रोतो, कितने सारे परेशानियां और दिक्कतें इस नशे के कारण होती हैं। कहते हैं पल भर के लिए कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसकी आदत पड़ जाए तो वो हमारे लिए बहुत सारी नुकसानदायक भी साबित हो जाती है। नशे की लत में पड़ के जब हमें कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं तो युवा जो नशे की लत से ग्रसित है वो अपने घर पर चोरियां भी करते हैं, अपने घरों पर भी करते हैं, बाहर से भी करते हैं। उन्हें बस ऐसा लगता है कि बस हमारी जो

उन्हें भी अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे योग, एक्सरसाइज या फिर टहलना। छोटी छोटी चीज़ें हैं श्रोताओं, जिन्हें हम अपना कर अपने जीवन को आनंद में, सुख में बना सकते हैं। तो श्रोताओं, थोड़ा सा हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक।

इसी गूंज के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी नशे की रोकथाम के उपाय की बात करते हैं। नशे की समस्या से निपटने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता की श्रोताओं बात करें तो युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज भी किए जा रहे हैं। परिवार की भूमिका की बात करें श्रोताओं, तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखने चाहिए, उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके, और साथ ही साथ युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए उन्हें खेलकूद, व्यायाम और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। कानूनी सख्ती की बात श्रोताओं करें तो सरकार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री पर सख्त रोकथाम लगाई जानी चाहिए। उपचार और परामर्श की और थोड़ा सा रुख करें तो नशे के आदि हो चुके लोगों के लिए उचित चिकित्सा, मनोचिकित्सा परामर्श और नशा मुक्ति केंद्र की मदद लेनी चाहिए। सरकार द्वारा भी नशा मुक्त अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी स्तर पर कई पहल जारी की गई हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को फिर से हम थोड़ा सा रोकते हैं और कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ तो सुनते रहिए।

चलो, तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा सा गीत सुनने में आपके परेशानी आई है। खैर कोई बात नहीं, फिर से ये खराबी ठीक हो जाएगी। तब तक हम आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको बोर बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर संगीत नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं जानकारियां तो हम श्रोताओं आप तक पहुंचा ही देंगे। नशाखोरी की हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, तो नशाखोरी एक ऐसी आदत है, ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति हानिकारक पदार्थों पर निर्भर हो जाता है। शरीर और मन को नियमित रूप से नशीले पदार्थों की तलब हो जाती है। नशीले पदार्थों के बिना व्यक्ति को तनाव, चिंता, शारीरिक तकलीफें महसूस होती हैं। यूं कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति नशाखोरी में तड़पने भी लग जाता है। लोग क्षणिक आनंद और भावनात्मक राहत के लिए नशीले पदार्थों का सेवन शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क इन पदार्थों पर निर्भर हो जाता है, जिससे खतरनाक एक चक्र बन जाता है, जिसे उचित सहायता और उपचार के बिना रोकना मुश्किल हो जाता है। और नशे की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने देखी है, जैसे शराब, हीरोइन, कोकीन और कई बार कृत्रिम दवाइयाँ भी होती हैं। और नशाखोरी आधुनिक समाज में आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सपनों को नष्ट कर देता है। छात्र और किशोर अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं और आसानी से प्रभावित भी हो जाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कोशिश करते हैं हम आप तक गीत पहुँचाने की। अरे श्रोताओं, कोशिश हमारी लगातार जारी है कि अपने श्रोताओं तक गीत पहुंच जाए, लेकिन कई बार होता है कि खराबी ऐसी पड़ती है कि थोड़ा सा समय उसमें लग जाता है। तो श्रोताओं, फिर से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। नशा करने से आराम या खुशी बिल्कुल नहीं मिलती है, ये तो भावनात्मक पीड़ा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है। नशे का आदी व्यक्ति अक्सर शिक्षा, करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो साथ ही साथ नशीली दवाओं के सेवन से अपराध और हिंसा और दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। जब परिवार का कोई सदस्य नशे की लत से गुजर रहा होता है, तो वो बहुत सारी बुरी तरह से प्रभावित, आदतों से प्रभावित भी हो जाता है। और साथ ही साथ जो है, बहुत सारी बच्चों को तनाव, भय और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो श्रोताओं, कोशिश हमारी पूर्ण हुई।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, नशाखोरी की बात हम कर रहे थे, तो नशाखोरी एक हानिकारक आदत है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। लोग बार बार नशीले पदार्थों का सेवन करने के आदि हो जाते हैं और कई किशोर तनाव में भी चले जाते हैं, और साथियों के दबाव तथा जिज्ञासा के कारण नशीले पदार्थों का सेवन जो है शुरू कर देते हैं। नशीली दवाओं का सेवन जो है शरीर को कमज़ोर कर देता है और साथ ही साथ मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, स्वास्थ्य समस्याएं, अवसाद और रिश्तों में दरार आ जाती है। लत परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती है। श्रोताओं, नशे की लत से बचने के लिए लोगों को अच्छे दोस्त चुनने चाहिए, स्वस्थ गतिविधियों में सक्रिय रहना चाहिए और साथ ही साथ नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और खुलकर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इसके साथ साथ श्रोताओं, जागरूकता और शीघ्र उपचार जीवन बचा सकता है। परामर्श, पुनर्वास और भावनात्मक सहयोग व्यक्तियों को उभरने में मदद करता है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि नशीले पदार्थ क्षणिक आनंद तो देते हैं लेकिन दीर्घकालीन पीड़ा का कारण बन जाते हैं। तो इस तरह की पीड़ा से श्रोताओं, हम सभी को अपना बचाव करना है और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए थोड़ा सा गीत संगीत भी अपने जीवन में शामिल करना है, क्योंकि संगीत जो है जीवन को सुकून देता है, खुशी देता है, आनंद देता है। तो संगीत को अपने जीवन में ज़रूर स्थान दें।

जी हाँ श्रोताओ, इश्क ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होता है, इश्क भी होना चाहिए। जो चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी होती है वो होना ही चाहिए। मीठा प्यारा सा एहसास होता है, लेकिन इश्क में दर्द भी बहुत होता है। तो श्रोताओ, इसी प्यारी और मीठी सी बातों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और हम नशे की बात कर रहे थे, तो नशे से थोड़ा सा ऊपर हटना है और आगे ज़िंदगी के सफ़र में हमें बढ़ना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में अपनाना है, और हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जिसमें व्यक्ति जो है हम लोग फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने का मतलब है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल क्षमताओं का पूरी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं। इसके लिए छोटे छोटे तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे बैलेंस डाइट अपना सकते हैं, फिर नियमित योग और व्यायाम कर सकते हैं, इसके साथ साथ पर्याप्त नींद ले सकते हैं, पानी अधिक पी सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज रख सकते हैं और नियमित हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। और जिन श्रोताओं को छोटी मोटी तकलीफें हैं, क्योंकि आजकल के समय में इन तकलीफ़ों से श्रोताओं कोई भी बच नहीं पाया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के सहारे जी रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, तो उन्हें अपनी प्रॉपर दवाइयों को लेते रहना चाहिए। और समय समय पर जब टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो टेस्ट भी ज़रूर करवाने चाहिए। और ज़िंदगी का सफ़र यूं ही आगे चलता है, एक दूसरे के सहारे हम ज़िंदगी भी काटते हैं। अरे, हम ही दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, हर कोई आजकल दवाइयों पर ही जीवित है। लेकिन दवाइयों के साथ साथ हमें अपना खान पान भी सही रखना है, और जो है अपनी डाइट को सही रखना है, नियमित योग और व्यायाम को करना है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाना है, और हम चाहे तो योग, जॉगिंग या किसी खेल को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करके दिल की सेहत में सुधार भी आता है और वजन को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओं, जहाँ मेहनत ज़रूरी है वहाँ आराम भी बेहद ज़रूरी है। आराम को भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए नींद भी बेहद ज़रूरी है। नींद स्वास्थ्य का अहम हिस्सा है, और साथ ही साथ प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर ले। ये न केवल हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती है, बल्कि हमारे शरीर की मुरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। श्रोताओं, जब हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो एक के बाद एक बात दिमाग में आने लगती है, और मन करता है कि इसे भी अपने श्रोताओं के साथ साझा कर ले। क्योंकि हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता हंसते मुस्कुराते हुए इस प्यारे से जीवन का आनंद ले और खुशी और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। तो बैलेंस डाइट को हम कैसे भूल सकते हैं? बैलेंस डाइट ज़रूर ले। बैलेंस डाइट स्वस्थ जीवन का पहला कदम है। अपना खाना ताज़े फल, सब्जियां, प्रोटीन और अच्छे फैट से भरपूर होना चाहिए। जंक फूड और प्रोसेस्ड चीज़ों से शुद्ध हमें बचना चाहिए। हेल्दी लाइफ जीना हम सभी के लिए अच्छा होता है। ऑर्गेनिक आहार न केवल हमें एनर्जी देता है, बल्कि ये इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। इसे खाने में ज़रूर शामिल करें। फिलहाल इस समय कार्यक्रम में हमें सभी दोस्तों को सुनवाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, क्योंकि श्रोता भी गीत के इंतज़ार में होंगे कि भाई आज हमारा दोस्त जो है भूल गए हैं गीत सुनाना। तो बिल्कुल हम भूले नहीं हैं, हमें याद है कि हमारे दोस्तों को इंतज़ार रहता है गीत संगीत का। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत, तो सुनते रहिए टेढ़ी गुंजन धर्मशाला। अंगूठे बड़े सारे आ रहे थे, मैंने बोला

इस गूंज के साथ श्रोताओ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी समय हमारे पास बाकी है आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके साथ जानकारियां साझा करने के लिए। तो श्रोताओ, हमारी जानकारियां थोड़ी सी स्वस्थ जीवन को लेकर हो रही थी कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो श्रोताओ, छोटी छोटी चीज़ें जो है हम खुद अपना सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो हमें खुद भी करनी पड़ेगी। और जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत कहीं ना कहीं रंग ज़रूर लाती है। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से आजकल के समय में कोई नहीं बच पाया है। स्ट्रेस जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन कई बार स्ट्रेस जो है हमारे लिए गंभीर समस्या भी पैदा कर देता है। तो इससे मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और मेडिटेशन, गहरी सांस लेने से हम छोटी छोटी स्ट्रेस को अपने से दूर कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस है भी तो उसमें भी हमें अपने आप को खुश रखना है और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनानी है जिससे कि हम उनसे जूझ सके और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ सके, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में श्रोताओं आते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम एक बार गिर गए तो उठना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम गिर गए हैं तो उठना पड़ेगा। और अगर हम सोचें कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो श्रोताओ ज़िंदगी में हर किसी के साथ अनहोनियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें संभलना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी बात हम पानी की भी कर लेते हैं। श्रोताओ, हाइड्रेशन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। दिन भर में कम से कम 8 या 10 गिलास पानी भी ज़रूर पीने चाहिए। और साथ ही साथ पानी पीने से क्या होता है, जो शरीर के विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और स्किन को चमकदार भी बनाते हैं। तो श्रोताओ, ये सारे हमारे उपाय जो हैं ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और नियमित चेकअप को तो हम श्रोताओं कैसे भूल सकते हैं। नियमित चेकअप करने से क्या होता है कि छोटी मोटी बीमारियों का हमें पता चल जाता है और समय रहते हम उनका इलाज भी करवा सकते हैं। समय समय पर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर करवाएं। इससे हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। जब हम इन छोटी चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, हम भी सही रहते हैं और अच्छा प्यारा सा जीवन हम जीते हैं। आजकल के व्यस्त जीवन में स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों से तो हमें जूझना है और आगे बढ़ना है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने हैं और स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना श्रोताओ संभव है। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी स्वस्थ जीवन एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें हम व्यक्ति फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने का मतलब है कि हम फिजिकल और मेंटल क्षमताओं का पूरी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना भी कर पा रहे हैं। तो श्रोताओ, इन चुनौतियों का सामना करना है और जीवन के सफर में आगे बढ़ना है। जीवन बहुत लंबा है, अगर यूं ही मुरझा कर बैठ गए, यूं ही सुस्त होकर बैठ गए, यूं ही ज़िंदगी से हार मान ली तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो फिर से उठना होगा, संभलना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है और हमारे श्रोताओं को इंतज़ार है गीत का, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप श्रोताओं तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया है कि आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के तकनीकी कारणों से उत्पन्न व्यवधान के कारण ई पास मशीनों के माध्यम से आधार आधारित राशन वितरित अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। इस संबंध में मामला संबंधित विभाग ने उठाया है तथा आधार ग्रामीणकरण सेवाओं को शीघ्र बहाल करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ है। तो श्रोता, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए छोटे छोटे उपाय हम अपना सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की कि अपने खान पान को सही रख के भी हम जिंदा दिली से इस जीवन को जी सकते हैं। आजकल के मौसम की बात करें, यानी गर्मियों के मौसम की बात करें, तो आजकल पेय पदार्थों का हम लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, और जैसे नींबू पानी, शिकंजवी, दही, लस्सी, छाछ और फिर फ्रूट जूस हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ पानी का सेवन भी हमें करना है। और गर्मियों के मौसम में अगर एक ख़ास चीज़ की बात करें तो हमें मार्केट पर जाते हुए रास्ते में लगे ठेले कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। अब ठेलों की आप बात सुन के हमारे श्रोताओं के मन में आ रहा होगा कि ठेले तो अरे समोसे के भी होते हैं, लेकिन समोसे खाकर, टिक्कियां खाकर आजकल के दिनों में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लगती है और हमारी सेहत के लिए सही भी नहीं होते हैं। आजकल पेय पदार्थों का सेवन करें सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों में। भाई श्रोताओं, गन्ने के जूस का ठेला भी आसानी से कहीं ना कहीं हमें मिली जाता है। इस मौसम में गन्ने का जूस हमें पीना चाहिए, क्योंकि इसके रस में कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। गन्ने का रस बहुत ही लाभकारी और सेहतमंद होता है। इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। गर्मियों में गन्ने का जूस न सिर्फ स्वाद में टेस्टी लगता है, बल्कि कई बीमारियों से भी हमें बचाता है। गन्ने में मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसे पीने से कई तरह की बीमारियों से हमें आराम मिलता है। अम्लपित्त रोगों में गन्ने का रस ताज़ा काफ़ी फायदेमंद होता है। पेट में होने वाली जलन से भी गन्ने का रस लाभ देता है। तो गन्ने के जूस के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इन फ़ायदों की थोड़ी सी हम बात कार्यक्रम में आपके साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस तरह से गीत के साथ कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आ चुके हैं और हमारी बात खुद के खान पान के बारे में हो रही थी कि हमें मौसमी चीज़ें हर एक लेनी चाहिए, मौसमी फलों के साथ साथ मौसमी पेय पदार्थ भी हमें लेने चाहिए। तो गन्ने के जूस के हम फ़ायदों की बात कर रहे थे, तो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। कैंसर की बात करें तो गन्ने के जूस में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और पोटासियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये तत्व कैंसर से बचाव करने में भी सहायक साबित होते हैं। गन्ने के जूस में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और गैस, एसिडिटी की समस्या से बचाते हैं। गन्ने का रस जो है कब्ज़ की समस्या को भी दूर करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ गन्ने का रस गन्ने का रस पीने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिरता है। इस तरह धमनियों में फैट नहीं जमता है और दिल व शरीर के अंगों के बीच में खून का बहाव अच्छा रहता है। श्रोताओं, कितने सारे फ़ायदे हमें जो है गन्ने के जूस से होते हैं। और चलते चलते थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। थकान को कम करते हैं गन्ने में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, पोटाशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी वजह से एक गिलास गन्ने का रस शरीर को एनर्जी से भर देता है। और गन्ने के रस में अल्फा हाइड्रिक्सी एसिड पाया जाता है जो त्वचा से संबंधित परेशानियों को दूर करता है, त्वचा को नमी देकर झुर्रियों को कम करता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कहने को मीठा होता है गन्ने का जूस। गन्ना स्वाद में मीठा और प्राकृतिक शुगर से भरपूर होता है। इसमें कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स की वजह से यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन कम मात्रा में। ये नहीं कि हम रोज़ रोज़ या दिन में दो चार गिलास इसे पी लें, कम से कम हफ्ते में एक बार थोड़ा पी लिया जाए तो थोड़े से हमारे शरीर को इनसे फ़ायदा ही होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं श्रोताओं हमारे खान पान में जिनका हमें सेवन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। हर चीज़ सीमित मात्रा में हो तो सही रहता है और ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो फिलहाल अपनी बातों को देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो मंचन धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
7: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
14: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
15: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं।

0: नहीं चलेगा।
1: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
2: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
1: हाँ बोलो।
2: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
1: अभी बताती हूँ।

हर्ष रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
8: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
9: हेलो। हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
8: या आपको एक फोन आएगा।
10: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
8: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
10: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
9: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
10: रिसीव करते वक्त नहीं।
9: तो याद रहे,
11: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
12: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
13: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
12: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
13: आप चिंता ना करें।
12: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
13: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
14: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
15: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
13: तुम क्या खड़ा?
15: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
15: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
17: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
18: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
17: हाँ बोलो।
18: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
17: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
18: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
15: गजब बेइज्जती है।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा के साथ। जी दोस्तों, तो अधिवक्ता रूमा जी के साथ और मेरे साथ जुड़कर आप सभी जानते हैं और जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के प्रति।
1: और रुचिका, हम भरते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे हौसलों की उड़ान। और इस उड़ान को पंख मिलते हैं जब हम मनोरंजन के साथ साथ बहुत ही उम्दा जानकारियां अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे दोस्तों को ये जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन भी करती होंगी।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, हौसलों की उड़ान किस लिए कहा गया है ये आप सभी जान भी चुके होंगे, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है मेरे हौसलों की उड़ान। तो हाजिर हो गए हैं हम दोस्तों कार्यक्रम लेकर आपके साथ। तो रूमा जी,
1: बिल्कुल
0: बताइए, आज के समय में क्या अपडेट है लोगों के लिए? ऐसी कौन सी न्यूज है जो बहुत सुनने को मिल रही है, या क्या क्या समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं?
1: बिल्कुल रुचिका, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि कुछ नया लेके अपने दोस्तों के साथ आएं। और अक्सर कई बार हमारा मन दुनियादारी में जब हम उलझ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जिनको देख के हमारा मन जो थोड़ा भावुक हो जाता है। और रुचिका, हम अपने इस कार्यक्रम में हमेशा बात करते हैं कानून अधिकारों की, जिसमें हम स्त्री और पुरुष बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम लोग ना एक विशेष वर्ग को हमने थोड़ा सा अलग रख दिया है हाशिए पे लाके, और ये विशेष वर्ग हमारा पुरुष समाज है। उनको भी देखिए, वैसे तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर महिला आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि पुरुष भी हमारे अत्याचार सह रहे हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का जो कानून है हमारा, उसका दुरुपयोग भी सामने आ रहा है। और अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज सुनी, एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से आके खुद को आत्महत्या जैसा संगीन कदम उठाया उन्होंने, और ये बहुत

0: दुखदाई सा लगा कि क्या सच में हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मिलकर मदद करते हैं, हम कानून हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं
1: जी,
0: लेकिन क्या इस कानून के दायरे में आके हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों रूमा जी ने। रूमा जी अक्सर पता है क्या होता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि घरेलू हिंसा के चलते या प्रताड़ना के चलते मतलब पत्नी के द्वारा आत्महत्या तक मजबूर हो गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पता है क्यों ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जहाँ पर भी एक औरत आवाज उठाएगी या कुछ भी, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, पर उनकी बात को सुना जाएगा।
0: बिल्कुल, महिला की हर एक बात को प्राथमिकता दी जाती
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसे में अगर कोई महिला पुलिस के सामने, कोर्ट में, कचहरी में कहीं भी जाती है
1: जी,
0: और अपना व्यथा जो भी सुनाती है, तो हम उसको सच ही मानते हैं। और इसके पीछे कारण पता क्या रहता है, हम शुरू से मानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में महिला जो है वो प्रताड़ित होती है, उसके साथ अत्याचार होते हैं, उसको हाशिए पे रख के अनदेखा किया जाता है उसको, तो इस वजह से भी कई बार जो है पुरुषों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है
1: जी।
0: क्योंकि रुचिका हम ये नहीं कह सकते कि हर एक महिला गलत करती है
1: जी, बिल्कुल,
0: बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत भी होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो हैं शायद इन कानूनों का अनुचित उपयोग भी करती हैं, और हमारे सामने इस तरह के मैटर्स आते हैं, और हमने कई बार देखा है कि कई बार पुरुष जो है, जैसे अभी अतुल सुभाष की बात हम करें, अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से त्रस्त होकर ही उन्होंने सुसाइड किया, और अपना लगभग 32 या 33 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है
1: जी,
0: जिसमें उन्होंने अपनी सारी व्यथा जो है वो आम जनता के सामने लाके रख दी। और जब इस चीज को हम सब ने देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्या महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं? तो ये थोड़ी सी बातें जो है वो चिंता का कारण भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कानून है हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, तो ऐसे में हर एक महिला जो यहाँ पे सच में प्रताड़ित भी होगी, उसको भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। बिल्कुल, और उसके ऊपर एक शंका जाहिर की जाएगी कि सच में महिला के साथ गलत हो रहा है कि नहीं।
1: जी बिल्कुल, तो अभी आपने शुरुआत में ही चिंता वाली बातें शुरू कर दी है, रुक दिए। रोमा जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दोस्त है वो भी चिंता में चले जाएंगे कि
0: नहीं,
1: आज ये बातों का पिटारा ही तो नहीं खोलने वाले
0: हैं। नहीं, बिल्कुल, हम किसी को चिंता में नहीं जाने देंगे। तो क्यों ना मिलके हम एक प्यारा सा गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि उन्हें चिंता से बाहर भी तो लेके आना पड़ेगा, उन्हें पहले से ही डर हो जाएगा, तो फिर कार्यक्रम में तो अभी बुने तो अभी बहुत सारी जानकारियां हैं उनके लिए। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: इस प्यारे से गीत के बाद रुचिका हम फिर से जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ
1: जी।
0: और हम बात कर रहे थे आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं हमारे सामने जहाँ पे हमें लगता है कि हमें लीक से हटकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। महिलाओं को बहुत सारे अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग होता है जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस तरीके से सामने आता है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं वो उन अधिकारों का कानूनों का जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं
1: जी।
0: लेकिन फिर भी हम जो महिलाएं हैं लीक से हटकर भगवान ने हमें कुछ ऐसे गुण डाले हैं जिनके बारे में अगर हम चर्चा ना करें तो मुझे लगता है कि जो चर्चा हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी अधूरी रहेगी।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। पता क्या होता है अक्सर हम क्या करते हैं जब भी हम बात करते हैं एज अ सोसाइटी बात करें या ऐसे नॉर्मल बातचीत भी करें तब हम क्या करते हैं या तो पुरुषों के बारे में ही बात करते हैं या तो बच्चों के ही बारे में बात करते हैं या तो फिर
0: महिलाओं
1: के बारे में बात करते हैं। पर बोलते हैं ना कि पहलुओं को अगर एक बैलेंस करके चलना है तो हमें दोनों साइड को देखना, उसी तरह से बातें भी रहती हैं कि दोनों पहलुओं को नजर में रखना है तभी हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो साथ ही आपने अभी बात की कि महिलाओं में ऐसे कुछ विशेष गुण।
0: बिल्कुल।
1: तो वैसे तो महिलाएं होती ही गुणकारी हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनमें तो होते ही हर गुण जो है बहुत ही खास होते हैं।
0: बिल्कुल। इसीलिए तो महिला को इतना सम्मान दिया जाता है समाज में, दुर्गा के रूप में
1: जी,
0: देवी सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में उनका पूजन किया जाता है
1: जी।
0: तो ये विशेष गुण ही है जो महिला को विशेष बनाते हैं।
1: सबला
0: इसीलिए कहा जाता है, अबला होने के बावजूद भी वो सबला है क्योंकि उसमें विशेष गुणों की जो खान है उसका हम जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों से उन कुछ गुणों की चर्चा करें।
1: जी जरूर। तो दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं तो महिलाओं में ऐसे कौन कौन से खास गुण रहते हैं, तो सबसे पहला तो दया, करुणा और क्षमा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये रुमा जी मैं एक आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि पता क्या होता है महिलाओं में, जैसे हम अभी ये बात कर रहे हैं क्षमा, दया और करुणा की, तो अक्सर हम अगर किसी का ऐसे कोई बच्चा रोता हुआ देख रहे हैं या कोई बड़ा भी रोता हुआ देख रहे हैं तो अक्सर हमारे अंदर वो दया भाव जो है ना वो जागृत हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और हमसे देखा नहीं जाता।
0: बिल्कुल। महिलाएं दूसरे के आंसुओं को देख के अक्सर हमने देखा है उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा नहीं है कि पुरुष का मन कठोर है उनको आंसू नहीं आते, लेकिन पुरुषों में एक
1: वो दिखाते नहीं है
0: ये विशेष गुण है। बिल्कुल।
1: ये भी विशेष,
0: ये विशेष गुण पुरुष का है कि वो अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको वो जज्ब कर जाते हैं, दूसरों के सामने आने नहीं देते। लेकिन महिलाओं में ये जो दया, करुणा और क्षमा के गुण है यही उनको विशेष भी बनाते हैं। और इसके साथ साथ जो एक चंचलता है, विनम्रता है, ये सब महिलाओं में, हर एक महिला में जन्मजात होती है
1: जी। और सबसे बड़ी बात की सहन शक्ति।
0: सहन शक्ति बिल्कुल
1: है ना,
0: सहन शक्ति का तो विशेष गुण हम
1: है ना, बचपन से ही उनमें वो गुण जो है वो आ जाता है और जब तक जिंदगी में जीवन में रहते हैं तब तक वो गुण हमेशा हमारे साथ रहता है। उसी से भी महिलाएं जो है एक विशेष जो है बनती, मतलब एक अलग उनकी पहचान बनती है। क्योंकि वैसे भी बोलते हैं कि जितनी सहन शक्ति एक महिला में होती है वो शायद ही किसी में होगी।
0: बिल्कुल सही कहा रुचिका आपने। लेकिन कई बार ऐसे रुचिका हमारे सामने जो आजकल के समय में, अभी हमने बात करी आपने कि क्षमा जैसा गुण भी हमारे महिलाओं में होता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इससे इतर कुछ चीजें ऐसी भी हैं रुचिका जी, आजकल के समय में हर एक महिला पढ़ी लिखी है
1: जी,
0: शिक्षा का अलख जो है वो पूरे विश्व में है, हर एक महिला पढ़ी लिखी है।
1: बिल्कुल।
0: और पढ़े लिखे होने के साथ साथ अपने अधिकारों का उनको ज्ञान है
1: जी,
0: अपने परिवार को किस तरह से संभालना है, किस तरह से चलाना है
1: जी,
0: ये सारी चीजें उनमें बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ हर एक चीज को साथ लेके चल रही है
1: जी।
0: लेकिन अभी हमने बात की थी अतुल सुभाष जी की
1: जी,
0: उस मामले में थोड़ा सा आके जो मन था वो ये सोचने को मजबूर हो गया कि अगर महिला में सच में क्षमा, दया और करुणा के गुण हैं तो फिर वो पुरुष जिसको हम कहते हैं कि वो कठोर होते हैं, उनके मन में बहुत सारी पीड़ाओं को जज्ब करने की ताकत होती है, वो अपने दुख दूसरों के सामने नहीं आने देते हैं, फिर भी उन्होंने आत्महत्या जैसा संगीन कदम जब उठाया तो वो कितने मजबूर हो गए होंगे, या क्या वो उस महिला की जिद थी या अहंकार था या ईगो थी, किस वजह से वो इतना भारी संगीन कदम उठाने को तैयार हो गए कि उन्होंने अपने छोटे बच्चों को भी नहीं देखा, अपने माता पिता का और भाई बहनों का भी ध्यान नहीं किया।
1: जी रूमा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है ना कि जब हम स्वार्थी बन जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: सेल्फिश हो जाते हैं जिंदगी में, तो हम फिर ना हम ये देख रहे होते कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, किसके साथ गलत कर रहे हैं या सही, मतलब उस समय सही और गलत की समझ
0: बिल्कुल
1: हमें नहीं रहती है।
0: और यही गुण भी हम महिलाओं में है कि हम सही गुण में अंतर बहुत अच्छे से कर पाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कई बार
1: महिलाओं में सिक्स सेंसेस होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सिक्स सेंस ऐसी होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
0: लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा मन खिन्न हो जाता है हमारा कि हम अपने अधिकारों का इतना दुरुपयोग क्यों करें, क्यों किसी को इतना मजबूर कर दिया कि हम अपने पर्सनल ग्रजेस को लेके, अपने स्वार्थ को लेके हम किसी को इतना मजबूर कर दें कि वो ये भी ना सोचे कि किसी के जाने से उसके परिवार पर क्या असर होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं को अगर कानून ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
1: वो ईगो जो है ना कहीं आ जाता है कि हमें ये ताकत मिली है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: हालांकि इस जो अतुल सुभाष का मैटर है
1: जी,
0: हम नहीं जानते सच्चाई क्या है
1: जी,
0: लेकिन जो कुछ भी सामने आया, जो उनके सुसाइड नोट में सामने आया, ये सारी चीजें अगर हम गहनता से देखें तो यही अभी तो देखिए कानून की बातें हैं, इंक्वायरी की बातें हैं, वो सारी चीजें बाद में ही सामने आती हैं। लेकिन जो कुछ भी उस आदमी ने अपने मरने से पहले इतना कुछ लिखा, अपने परिवार की स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद जो आदमी इतना गहरा कदम उठाने को तैयार हो गया है, तो हम समझ सकते हैं कि किस हद तक वो व्यक्ति मजबूर हुआ होगा, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों के बारे में भी नहीं सोचा, और आज परिस्थितियां हमारे सामने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं और हमारे श्रोता कहीं नाराज ना हो जाए
1: जी। तो जी जरूर मुझे समझ में आ रहा है आपकी सॉरी इशारा कर रहे हैं, आपको अभी गाने सुनने का मन कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जरूर गाना तो बनता है क्योंकि बातें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक तो बनता है ना।
0: बिल्कुल बनता।
1: तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको इस खूबसूरत से गीत की ओर। एंजॉय कीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा जी के साथ।

0: रुचिका जी, बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और मन थोड़ा सा अब फिर से आगे बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को याद दिला देते हैं कि आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz से। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी, और बातचीत बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही गंभीर भी है। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल चिका, अक्सर जब भी हम कहीं किसी भी समूह में जाते हैं, बात करते हैं महिलाओं से, अक्सर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि महिला एक ऐसा कमजोर वर्ग है जो जगह जगह उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टॉर्चर करता है, चाहे वो फैमिली हो, बाहर हो, काम के सिलसिले में भी। लेकिन कभी आपने ये भी सुना है पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं?
1: सुनने में वही बात है ना कि जो चीजें हमें दिखती नहीं है उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है।
0: चीजें तो दिखती हैं लेकिन हमारा समाज ऐसा है,
1: नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि स्ट्रॉन्ग जो तबका है हमारा वो पुरुष है, महिलाओं को दबा के रखते हैं उनके साथ।
1: एक बड़ी बात कि लड़कों को पहले से ही बोला जाता है ना कि आप लड़के हैं, ना तो लड़के रोते हैं, ना तो लड़के जो है ज्यादा कमजोर, अपनी कमजोरी जो है
0: अपनी कमजोरियों को दिखाते नहीं है। लेकिन अभी हम बात करें तो बहुत सारे जो पुरुष हैं हमारे साथी वो भी प्रताड़ित होते हैं, और सोशल मीडिया के समय में तो ये चीजें उजागर भी होने लगी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक चीज और रुचिका, मैं ये कहूंगी कि अगर पुरुष समाज अगर किसी महिला की वजह से या किसी भी वजह से प्रताड़ित हो रहा है ना, तो वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि शुरू से जैसे आपने कहा ना, बचपन से सिखाया जाता है कि उनके साथ कुछ भी बात हो रही है उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है, रोना नहीं है, और वो मन ही मन में अपनी चीजों को दबा जाते हैं, वो बताते नहीं है। लेकिन अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें 44% जो पुरुष थे वो घरेलू हिंसा के शिकार थे।
1: जी।
0: अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत की बात करें तो यहाँ पर भी देश में जो है पुरुषों की आत्महत्या करने की जो दर है बहुत ज्यादा है।
1: जी।
0: और महिलाओं की अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो महिलाओं के आत्महत्या के मामले कम आते हैं, पुरुषों के बहुत ज्यादा आते हैं। और घरेलू हिंसा के मामलों में बहुत सारे जो केसेस हैं पुरुषों के ऊपर दर्ज होते हैं, दहेज के कानून में उनको फंसाया जाता है, और उसमें से ज्यादातर मामले जो होते हैं वो झूठे होते हैं।
1: बिल्कुल। अब आपने घरेलू हिंसा की बात की है रूमा जी, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि अक्सर जो पुरुष होते हैं ना वो बेचारे फंस के रह जाते हैं एक तरह से उस घरेलू हिंसा के चलते। पता क्या होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वाइफ, मतलब होता है ना, लड़की ऑब्वियसली एक अलग घर से आई है तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर कुछ का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एडजस्ट करने में उन्हें दिक्कत आती है, पर वो कहीं ना कहीं वो जो ईगो है, वो जो अहम है, वो बीच में आ जाता है।
0: आजकल के समय में रुचिका क्या हो रहा है ना कि हम लोग अपने बच्चों की परवरिश इस ढंग से कर रहे हैं
1: जी,
0: कि हमने अपनी बेटियों के मन में ये डाल रखा है कि तू हमारी इकलौती संतान है।
1: जी बिल्कुल।
0: हमने तेरे को सारी सुविधा दी है, तो ससुराल में अगर कोई ऐसी वैसी दिक्कत होगी तो हम बैठे,
1: कोई बात नहीं।
0: और पहले के समय में हम देखें तो महिलाओं को ये बताया जाता था कि तेरा ससुराल ही सब कुछ है, जैसे उन लोगों के
1: उनको ही अपना मानना है,
0: उनके बीच में रहना है। लेकिन आजकल के समय में पिछले 10 सालों से अगर हम गौर करें तो ये हो रहा है कि हम महिलाओं को, हम खुद भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं
1: जी।
0: क्योंकि हम ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपने बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे में क्या होता है, जब लड़की अपने मन में ये बात लेके जाती है कि उसकी बैक स्ट्रांग है, उसके माता पिता भाई सब उसके साथ हैं, वो कुछ भी कर सकती है,
1: कुछ भी, तो ऐसे चाहे वो आगे वालों को परेशानी ही क्यों ना हो उस वजह से।
0: और आजकल के महिलाओं में, बच्चों में, आजकल के युवा जो वर्ग है उसमें एडजस्टमेंट की जो भावना है वो बड़ी कम
1: है ही नहीं। वही तो मैं बात कर रही थी ना कि उसी के जो भावना कहीं ना कहीं कमी है हमें देखने को मिलती है, तो उसी के चलते जो पुरुष हैं वो समझ में नहीं आता, उन्हें कंफ्यूज हो जाते कि वो अपनी पत्नी की साइड ले या अपनी माँ की साइड ले, फैमिली में कहाँ जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो वो अक्सर है ना प्रताड़ित होने के ज्यादा केसेस देखने को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर हमने शुरू से वही किया है ना कि हम यही कहते हैं कि महिलाएं एडजस्ट करती हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मुझे लगता है कि पुरुष भी बहुत एडजस्ट करते हैं। और अगर हम भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी बताया कि अमेरिका में भी 44% मामले जो हैं वो घरेलू हिंसा के हैं। भूटान में 2023 में 778 केसेस जो थे वो घरेलू हिंसा के दर्ज हुए थे, जिसमें से 69 केसेस जो थे वो पुरुषों ने दर्ज करवाए थे, पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा हुई थी। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो हर 3 में से एक पुरुष जो है वो घरेलू हिंसा का शिकार है। और पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा की आवाज उठती है, लेकिन ये आवाज इतनी धीमी होती है कि जल्दी ही खामोश भी हो जाती है
1: जी,
0: क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि महिला भी पुरुष के साथ ऐसा कर सकती है।
1: तो हम देते हैं ना वहाँ पे, फिर वही अधिकारों का गलत प्रयोग जो है हम करते हैं, कानून का गलत फायदा उठा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर नाइंसाफी होती है दूसरे इंसान के साथ। तभी तो मैंने कहा था ना कि दोनों पहलुओं को जो है हमें नजर में रखना है, तभी हमें कोई भी डिसीजन जो है लेना है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे नहीं कि समाज में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही एक महिला के साथ गलत करते हैं। आज के समय में हम देखें,
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत ही केसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि
0: महिला सशक्तिकरण का, बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का दौर है और ऐसे में महिला इतनी सशक्त हो चुकी है और उसको अपने अधिकारों का ज्ञान है
1: जी।
0: और कुछ महिलाएं जो हैं वो इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं, पुरुषों के खिलाफ करती हैं। मैंने अभी कहा कि दहेज उत्पीड़न के 70% मामले जो होते हैं वो झूठे होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: एक तो लोग अवेयर हैं, आजकल हर घर में हर कोई संपन्न है, और ज्यादातर किसी भी मैं शादी में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं शादी में दहेज की बात अगर हम करें, नहीं नहीं हम कुछ दहेज नहीं ले रहे, हमारे घर में सब कुछ है
1: जी।
0: लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हो जाता है। तो बहुत सारे मामले मैंने कोर्ट में भी देखे हैं जहाँ पे सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमने झूठे केसेस पुरुषों पे कर रखे हैं
1: जी।
0: और ये अभी पिछली जो हम घटना की बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहाँ पे हमें लगता है कि हम महिलाएं पुरुषों के साथ भी गलत कर रही हैं और इन कानूनों का नाजायज फायदा उठा रही हैं।
1: और रूमा जी, आज के समय में अगर हम देखें ना तो पुरुषों के साथ वहाँ भी गलत हो रहा है जहाँ पर महिलाएं जो है, पता है क्या, शुरुआती दौर में अब कई बार होता है कि पेरेंट्स जो है मतलब जबरदस्ती भी किसी लड़की की अगर शादी करवा देते हैं या कुछ भी है, क्योंकि आज के समय में हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, पर फिर भी अगर फैमिली एग्री नहीं है तो वहाँ पर वो हो जाते हैं ऐसे केसेस, तो वहाँ आगे उन्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, वो नहीं कर पाती हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको आज की डेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे,
0: बिल्कुल।
1: तो वहाँ पर फिर वो उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है जहाँ उनका मन नहीं लग रहा है तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर फिर वो झूठे केस का जो है ज्यादा सिचुएशन बन जाती है।
0: बिल्कुल रुचिका, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आजकल ज्यादातर जो है हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अनुसरण करना शुरू कर दिया है, और उस चक्कर में हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें गलत नहीं लगती हैं। हम देख रहे हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है
1: जी।
0: और दूसरा, आजकल लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है। और ऐसे में फिर अपने पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए हम दहेज जैसे संगीन उनके ऊपर आरोप,
1: दुर्व्यवहार जो है मेरे साथ घर पे किया जा रहा है, इस तरह के केसेस या एलिगेशंस जो है हम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही बात चल रही होती है कि इस सिचुएशन से, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बाहर है,
0: बिल्कुल,
1: और हमें नहीं समझ है कि हम क्या कर रहे हैं,
0: बिल्कुल, हम,
1: तो हम अपने परिवार को तोड़ रहे हैं एक न एक तरीके से,
0: हम अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं, और सलून का सहारा लेके एक तो हम अपने पार्टनर को टॉर्चर भी कर रहे हैं और दूसरा अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं
1: जी।
0: तो है तो ये गलत बातें
1: जी, बिल्कुल। तो यही छोटी छोटी बातें जो है हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गलत जो है हमेशा महिलाओं के साथ ही होता आया है और आज भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय बदला है, सोच बदली है, उसी तरह से लोग भी बदले हैं, तो दोस्तों ये सिचुएशनें भी बदली हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक महिला के साथ ही गलत हो रहा है, पुरुष के साथ भी गलत हो सकता है या हो रहा है।
0: कुछ लोग अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं, इस वजह से वो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है हमारे दोस्त ना गलत कदम उठाएं, यहाँ से चले ना जाएं, तो मुझे लगता है गीत हमें फिर से सुन लेना चाहिए
1: जी। जरूर रूमा जी, तो आइए दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और अभी आप एंजॉय करने वाले हैं कार्यक्रम का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी के साथ बहुत ही प्यारी सी इस बातचीत के साथ। तो आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा जी के साथ। तो आइए रूमा जी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम बात कर रहे हैं, खासकर हम बात कानून से संबंधित ही करते हैं हर कार्यक्रम में, तो आज भी हम इसी से संबंधित
1: आज का मुद्दा थोड़ा अलग हटके है हमारा। आज हम बात कर रहे हैं पुरुष प्रताड़ना की।
0: तो महिलाओं से हमें मार पड़ जाएगी?
1: नहीं, क्यों पड़ेगी भाई, हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे ना। महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो हमारे पुरुष भाइयों के साथ भी, मित्रों के साथ भी गलत हो रहा है।
0: जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि जब भी हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें एक बैलेंस जो है बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम या तो महिलाओं की ही बात करते हैं या तो पुरुष प्रधान की ही बात करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उसी के चलते हम कहीं ना कहीं कुछ बातों को अनदेखा कर देते हैं।
1: वैसे भी ना आज के दौर में हम समानता के अधिकार की बात करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो पुरुष और महिला दोनों समान है। कहते हैं कि घर गृहस्थी की गाड़ी जब चलती है तो दोनों पहिए अगर समान होंगे, बैलेंस होगा उनमें, तो बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक भी पहिया अगर इनबैलेंस हो जाता है तो वो गृहस्थी की जो गाड़ी है वो लड़खड़ाने लगती है और उसका असर जो है हमारे पूरे परिवार पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे भी पड़ता है, हमारे माता पिता पे भी पड़ता है, हमारे सगे संबंधी भी उससे परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान वो कपल होते हैं जो इस इनबैलेंस गाड़ी को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हम उन पुरुषों की बात करते हैं जो कि किसी मतलब कि झूठे केस में या तो फिर अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार की वजह से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, तो उनकी बात कर ली जाए तो भी, वैसे तो हम कर ही रहे हैं। कुछ आंकड़ों को नजर में रखते हुए करें या कुछ संगठनों को नजर में रखते हुए बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल रुचिका, एक बात मैं बोलूं।
0: जी
1: आपने पहले बात की थी ना कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं या लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं।
0: जी
1: तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी ईगो में आके या जब हमारे मन की बात नहीं हो पाती है हमारे पार्टनर के साथ, तो तब भी हम झूठे केसेस में लोगों को फंसा देते हैं, अपने पार्टनर को फंसा देंगे। अक्सर हमारे पास इस तरह के सामने हमारे मैटर आते हैं कि शादी का झांसा देकर किसी ने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है और बाद में वो बलात्कार का झूठा केस उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो जाता है। और अभी भी बहुत सारे जो केसेस हैं हमारे सामने बलात्कार के, इस तरह के झूठे आते हैं जहाँ पे महिला ने अपनी मर्जी से व्यक्ति के साथ संपर्क बनाया है, संबंध बनाया है, और उसके बाद जब उसकी बात नहीं मानी जाती है, उसके अकॉर्डिंग पुरुष काम नहीं करता है, बात नहीं करता है, या उसकी मंशा जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो झूठे केस में उनको फंसा देती है। और बहुत सारे बलात्कार के मामले हमारे सामने ऐसे आते हैं जो झूठे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो 96% जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं वो झूठे होते हैं, क्योंकि वहां पे भी महिला की ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, उसके अकॉर्डिंग फैमिली में वो उसको जगह नहीं मिल पाती है। और महिलाओं में आजकल यही है कि सिर्फ पति पत्नी हो, तीसरा व्यक्ति की जगह होनी ही नहीं चाहिए परिवार में। ये जो सोच आजकल के युवाओं में है वो भी बहुत सारे झूठे केसों को
0: बढ़ावा
1: दे रही है। और आपको एक बात बताऊं मैं, अगर हम हिमाचल, तो हमारा

0: अभी इस तरह के बहुत सारे मैटर होते हैं सामने नहीं आते हैं जी। लेकिन भोपाल में एक इंटरनेशनल संस्था बनी थी सेव इंडियन फैमिली
1: जी।
0: तो यहाँ पर बहुत सारे मामले जो हैं वो पुरुषों ने दर्ज करवाए हैं और एक भाई नाम से संस्था बनी है यहीं पे भोपाल अगेंस्ट इनजस्टिस, जिसको भाई शॉर्ट फॉर्म में भाई कहते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं ये दोनों ही प्रताड़ित पुरुषों के लिए काम कर रही हैं और इनके जो संस्थाओं ने जो काम किया है पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहती हैं। बहुत सारे पुरुष भी इन संस्थाओं के माध्यम से अपनी FIR थानों में दर्ज करवाने में सफल हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है जब कोई पुरुष थाने में जाएगा ना FIR करवाने अपनी पत्नी के खिलाफ या किसी भी महिला के खिलाफ कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो हम लोगों की एक वो रहती है कि ये तो महिला है ये गलत कैसे कर सकती है, और पुरुष इस शर्म और डर के मारे भी उस महिला साथी के ऊपर रिपोर्ट नहीं करवा पाते हैं, दर्ज केस नहीं दर्ज करवा पाते, क्योंकि एक तो पुरुषों का जो क्या बोलते हैं स्वाभिमान जिसको हम बोल सकते हैं वो भी आड़े आ जाता है
1: जी।
0: उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो मारपीट भी सह रहे हैं, हर तरह की उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन पुरुष होने की वजह से वो अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं
1: जी।
0: तो ये जो संस्थाएं हैं भाई और सेव इंडियन फैमिली ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और इनके पास इनके जो आंकड़े जो बताते हैं तो रोजाना बहुत सारे केसेस डेली लगभग ऑल ओवर छत्तीसगढ़ और भोपाल के इनके पास जो केसेस आते हैं
1: जी
0: 11 फोन पुरुषों के डेली इनके पास आते हैं जो अपनी समस्या लेकर इनको बताते हैं, घरेलू हिंसा के मामले दर्ज करवाए हैं और इस संस्था ने बहुत सारे पुरुष साथियों का सहयोग भी किया है, उनकी फैमिली के डिस्प्यूट्स को सेटल किया है, उनकी जो भी पर्सनल समस्याएं थी उनके काउंसलिंग के माध्यम से और अन्य तरीकों से उस समस्या का हल इन्होंने ढूंढा है
1: जी। बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि ये जो सुसाइड केसेस हैं जो पुरुषों के केसेस में ऐसे हमें सुनने को मिलते हैं, तो ये केसेस तब हमें सुनने को मिलते हैं क्योंकि जब पुरुष को ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई बात सुनी नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं या घर के बारे में ऐसा कौन करता है।
0: वैसे भी हम लोगों में एक ना हंसने की प्रवृत्ति है
1: जी,
0: जब हम कहते हैं ना कि फलां पुरुष ने महिला ने उसको पीटा है
1: जी,
0: तो हम लोग उस पुरुष के प्रति एक अलग सा दृष्टिकोण बना लेते हैं,
1: औरत से मार खा रहा है।
0: तो ये जो सोच है हम लोगों की ये भी पुरुषों को आवाज नहीं उठाने देती है
1: जी।
0: लेकिन इसके लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है जिसपे पुरुष जो है वो अपनी अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना हो रही है किसी भी प्रकार की, तो वो वहाँ पे अपनी समस्या जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे आके बता सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा सुन के, नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे हर रोज 40 कॉल्स आती हैं जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों को प्रताड़ित किया है
1: जी।
0: और मैं चाहूंगी कि हम अपने दोस्तों को भी ये हेल्पलाइन नंबर बताएं
1: जी।
0: तो हमारा ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो पुरुषों की हेल्प के लिए बना है वो है, आप सभी नोट करें, 0888249848। अब देखो 498 इस नंबर में लास्ट है, तो 498 एक ऐसी धारा है जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो दहेज का नाम लेके पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, झूठे केसेस में बहुत सारे पुरुषों को जो फंसा देती हैं। तो नंबर एक बार फिर से नोट करवा दें
1: जी। बिल्कुल,
0: नंबर है 0888249848। और जब भी इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स आती है तो उसका पूरा डिटेल जो है वो नेशनल पोर्टल पे दर्ज होती है, उसके बाद पुरुष की हेल्प के लिए जो भी वन पड़ता है उसको करते हैं, चाहे वो पुलिस में FIR दर्ज करवाने से रिलेटेड हो, उनके घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए हो, और ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। और अभी इसी पे अभी वर्ष 2014 में इस हेल्पलाइन नंबर पे 38,000 कॉल्स पुरुषों की आई थी और ये सारी कॉल्स थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की
1: जी।
0: तो आप देखें कि कितने हमारे पुरुष परेशान हैं कि एक साल में जब ये हेल्पलाइन नंबर आया था तो उसके बाद 38,000 कॉल्स उस साल में आई हैं, तो बहुत सारे पुरुष जो हैं वो प्रताड़ित होते हैं।
1: बिल्कुल, पर वही बात है कि कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम देखते नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पुरुषों में जो है एक अलग सी पावर होती है, उन्हें कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, ये हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं। और हम तो खैर, हम महिलाएं जो हैं अपना दुख दर्द रो के किसी से बात करके जो है उसे कम कर लेती हैं ना, बांट लेते हैं, पर पुरुष जो है किसी से वो दुख ना तो बांट पाते हैं, ना तो वो अपना दुख किसी के साथ बता पाते हैं।
0: बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, अलग अलग राज्यों के अगर हम आंकड़े लें, जो भाई संस्था और फैमिली सेविंग जो भाई संस्था में आए थे
1: जी,
0: तो वहाँ की मैं बात करूँ तो हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो 12.33% के केसेस जो थे वो कर्नाटका थे के थे
1: जी।
0: और दिल्ली जो हमारा NCR एरिया है वहाँ से 11.27% जो केसेस थे वो इस हेल्पलाइन नंबर पे दर्ज हुए थे
1: जी।
0: और अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों में जो स्थिति बेहतर भी है, जहाँ पे पुरुषों की प्रताड़ना के मामले ना के बराबर रिकॉर्ड हुए हैं, और उसमें है हमारा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पुरुषों की स्थिति बहुत बेहतर है। हमारे बिहार, झारखंड और राजस्थान में पुरुषों के जो केसेस हैं बाकी राज्यों के ना के बराबर हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हर जगह पुरुष प्रताड़ित हैं, कई जगह पर अभी भी पुरुषों ने अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है जहाँ पे उनके साथ गलत नहीं हुआ है, और महिलाएं अभी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ना कि उनको प्रताड़ित कर रही हैं। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन फिर भी अगर चिंता की बात हम करें तो देश भर में हर साल 96,000 पुरुष जो हैं वो आत्महत्या करते हैं
1: जी।
0: हर 8.5 मिनट में एक विवाहित जो पुरुष है वो मौत को गले लगाता है। और रुचिका एक और बात बताऊं मैं, 2,00,000 पुरुष और महिलाएं जो हैं वो 498A के मामलों में हर साल गिरफ्तार होते हैं। तो आप देखो, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर में लास्ट में 498 दिया गया है, क्योंकि जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें से बहुत बहुत सारे केसेस जो हैं वो गलत होते हैं, जो झूठे होते हैं
1: जी। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं हमें तभी देखने को मिलता है जब ये घरेलू हिंसा जो है एक भयानक रूप ले लेती है। तो घरेलू हिंसा क्यों होती है, किस तरह से होती है, ये तो खैर आप सभी जानते हैं, क्योंकि रूमा जी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर एजुकेशन भी बीच में आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी वो डिग्री का रॉब लेके जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो वहां पर फिर हमें एडजस्ट करने में मुश्किल आती है।
0: आपने तो जब अभी बात की ना इसकी, तो मुझे किस्सा याद आया, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में था वो मुद्दा
1: जी,
0: जब एक मजदूर पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, IAS ऑफिसर वो बनी, और जैसे ही उसने वो पद संभाला तो उसको लगा कि मेरे पति के साथ, इस व्यक्ति के साथ खड़े होना मेरे स्टेटस को प्रभावित करता है, तो उसने उसको छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं है, अगर महिलाओं ने आज कुछ अचीव किया है, कहीं पहुंची है, तो पुरुषों का बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहा है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर हम अपनी बोलते हैं ना, पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि पहले के समय में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, पर अब वो अवसर जो है लड़कियों को मिल रहे हैं, वो मौके मिल रहे हैं, और एक ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता जो है उन्हें मिल रहा है। तो उसका हम सही से प्रयोग करें, ना कि वही बात कि कानून का, जिस तरह से हम कानून की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे हम गलत फायदे के लिए लेकर आते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसी तरह से हम कहीं ना कहीं शिक्षा को भी एक मोहरा बना लेते हैं अपनी सेल्फिश, स्वार्थी होने का, है ना।
0: बिल्कुल। और रुचिका, शिक्षा तो जो है वो समाज के लिए आईना है, उसके विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक बात मैं बोलूं, जब हम महिलाएं किसी भी राइट का, किसी भी अधिकार का नाजायज फायदा उठाती है ना
1: जी,
0: तो उसका नुकसान जो है गरीब तबके पे बहुत पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: लोग डरते हैं इन चीजों से।
1: बिल्कुल।
0: और अपने बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं।
1: और करता कोई और है।
0: बिल्कुल।
1: पर भुगतना किसी और को पड़ता है।
0: बिल्कुल। और इसी वजह से हमारी बहुत सारी महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा भी होती है। और रीजन रहता है कि हम सब भी अपने अधिकारों का जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो जरूरी, जिनको जरूरत है, जिस तबके को जरूरत है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लोग उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक महिला के साथ पूरा समाज बंधा होता है
1: जी।
0: और जब किसी एक महिला के द्वारा गलत किया काम पूरे समाज को प्रभावित भी करता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हम लोग अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और हमारी किसी एक व्यक्ति की गलती सारा समाज भुगतता है।
1: जी बिल्कुल, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गलती किसी से एक से ही हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है, पर हमें उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गलती हो भी गई है तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम उसे कैसे सुधारते हैं अपने जिंदगी में। पर अगर उस गलती को हम बढ़ावा देते जाते हैं, उस गलती के सहारे पे जिंदगी पे चलते हैं, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती है।
0: बिल्कुल। और तो, मेरा तो सभी से आग्रह यही है अपने दोस्तों से
1: जी,
0: कि कभी भी अगर आपको कोई भी अधिकार मिला है, कुछ भी आपके पक्ष में है, तो उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए तो उस समय के लिए वो एक पारितोषिक की तरह हो सकता है, लेकिन हमारा ये दुरुपयोग किसी और का भविष्य जो है वो खराब कर सकता है। और अधिकारों का दुरुपयोग जब हम करते हैं तो अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे मैटर हमारे सामने आते हैं, अभी हम जिक्र कर ही चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे समाज की इस तरह की जो छवि है वो सब पूरे विश्व में जाए। हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए, उनका सही दिशा में उनका पालन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज तरक्की ही करेगा। लेकिन जब हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो जो जरूरतमंद व्यक्ति है वो भी उन अधिकारों का प्रयोग करने से कतराएंगे। और एक महिला की जो छवि है हमारे समाज में कि उसमें करुणा, क्षमा और दया, सहनशीलता जैसी चीजें भरी हुई हैं, ये छवि जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। कहीं कहीं आकर मेरा अपने महिला साथियों से आग्रह है कि अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने वर्चस्व को बनाए कर रखने के लिए इन चीजों को त्याग दे और क्षमा, सहनशीलता, दया और करुणा जैसे गुणों को अपना कर इस समाज के विकास में अपना सहयोग दें। और कहीं भी किसी के साथ गलत ना करें। अगर कहीं हमारी ईगो क्लैश भी हो रही है तो उस ईगो को बैठकर, अपने साथी के साथ बैठकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, ताकि एक अच्छे समाज की जो परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने करी या हम सोचते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश इस दिशा में जाना चाहिए, वो सार्थक हो सके।
1: जी तो रूमा जी, अब मुझे लग रहा है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत जागरूक भी कर लिया अपने दोस्तों को। तो अब समय हो गया है सभी से अलविदा लेने का। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज
0: अपने पन की।

0: भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
8: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
9: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
8: या आपको एक फोन आएगा।
10: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
8: और यहाँ आप डालोगे पिन और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
10: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
9: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
10: रिसीव करते वक्त नहीं।
9: तो याद रहे,
11: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
12: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
13: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
12: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
13: आप चिंता ना करें।
12: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
13: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
14: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
12: तुम क्या खड़ा?
14: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
14: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
14: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तांदा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
7: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

0: कानवे दशमलव 2 MHz पर ये दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दर्शतों पहले तो तुहां सारे दा ही इस कार्यक्रम च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने जितने भी फेसबुक लाइव कने जुड़ियो तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, कने प्यार भरा तिना सारे दा ही नमस्ते है। दर्शकों तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते, कने अहां कने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। तुह सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है, ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। कने तुह सारे भी इस लाइव कार्यक्रम च अहां कने जुड़ी सकते, कने अहां कने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते। दोपहर दे 2 जिड़े से जरूर बजी हो न, कने ये दोपहर दा समय थोड़ा दिया सुस्ती भरा होंदा, पर अहां जरूर तुहंदी जिड़ा सुस्ती है से गायब करनी है। कने अहां दे पहले जिड़ा श्रोता न से अहां कने जुड़ चुके हो न, कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया जी
0: जी। तुहां कुतु ते बोला दे, कने तुहांदा ना के है जी?
1: चैतड़ू ते बोला दे
0: जी। चैतड़ू वाले दे क्या हाल चाल है जी? क्या काम कार छेड़िया तुहां, क्या करा दे?
1: काम कार दा कुछ भी नहीं है अली
0: जी। अली
1: कोई उरा दा काम अली चल लियो नहीं
0: जी? अच्छा, उरा दा काम अली नहीं चल लिया?
1: पानी लेट हम दान जरा कार सवा
0: जी। अच्छा, पानी जड़ा है से तो हन जो लेट मिलदा जी जी। ता कदे लगा दा तो हन जो ये कार्यक्रम माटी दी महक
1: सुन दे दाना रोज ही तो मा जो था रोज फोन करते रहंदे
0: जी। रोज ही जड़ा है से सुन दे तो हां ना जी। कांगड़े दा टिल्ला सुनना है तुहां?
1: काजला दे च
0: जी। काजल जी दी आवाज च सुनना है तुहां एक गीत भजन? जरूर, ए भजन तुम तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद
0: जी। तशो तो अहां भी अपने कार्यक्रम दा आगाज जड़े से जरूर कर देन इस गीत कन्ने। तुह सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंदी।

0: दर्शकों अगले जिड़ा श्रोता ने से यहाँ करने जुड़ चुके हैं कर दिन तीना करने गल बात से कुछ थे बोला दी कने तीना दा ना के हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, क्या हाल चाल है ना
0: जी? हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक इन जी, तो हाँ दसा तो हाँ ठीक है ना?
1: हाँ जी ऐसा ठीक है ना
0: जी। पहले तो तुहां अपना नाम दसा कने कुहा जगह ते रहने आले ने जरूर दसी दिया
1: जी। मैं कांगड़े ते बोल रही पवना
0: जी। कांगड़े ते बोला दे पवना जी।
1: हाँ जी
0: जी पवना जी, क्या हाल चाल है कांगड़े आले आंदे?
1: कांगड़े आले दे हाल चाल ठीक है ना, पर गर्मी बहुत ज्यादा है
0: जी। अच्छा गर्मी बड़ी ज्यादा है?
1: हाँ जी बड़ी बड़ी ज्यादा है गर्मी
0: जी। ता नोई ताजी कांगड़े दी?
1: बस बढ़िया जी।
0: जी ता
1: ठीक है
0: आज
1: चलिए कांगड़े दा कुछ
0: जी ठीक ठाक चल रहा कांगड़े दा
1: हाँ जी
0: जी ता आज कना जेड़ा दिन ने सैक दिया की गया तो होंदा?
1: बस जी बड़ा अच्छा गया दिन आज का चलिए ये दिन ना ठीक है यार लिखा कथा
0: जी 2 बजे तक तो ठीक है, पर वैसे भी उन तो हाँ इस सफर करने जुड़े रहना है 2 से 3 बजे तक, ता और भी प्यारा रहना है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता तो हाँ रोजाना इस कार्यक्रम जो सुन दे
1: रोज सुन दे जी। हाँ थोड़ा प्रोग्राम बस 2 बजते कने ऐसा रेडियो ऑन कर देना
0: जी। अच्छा 2 बजते कने रेडियो सेट जेड़े से तो हाँ ऑन करी देना
1: हाँ जी
0: जी। ता और नई ताजी
1: बस जी बढ़िया। तो सा सना अपने पासे दी
0: जी आंदे पासे दी भी थोड़ी कदी मौसम अपना जेड़ा बदलाव ऐसे जरूर लै दे है ना जी।
1: हाँ जी थोड़े पास तो बरखा वगैरह हो जा रही है तो जरा नहीं हो रही
0: जी इस साइड तो तुहां पता ही है कि टाइम टाइम बरखा जेड़ा ऐसे आंदी रहंदी ना जी।
1: हाँ जी बस इतों तो खूब गरजदा गुरजदा कने चली आंदा जरा नहीं बारिश होनी
0: जी। गर्मी भी इतना इतनी ज्यादा है कि मतलब ज्यादा है ना जी। गर्मी कांगड़े वाली साइड तो वैसे भी ज्यादा है
1: हाँ जी ऊपर ते लाइट चली याद एक तो और गर्मी लग गई
0: जी। लाइट आते कुछ याद आया कि पुरानियां गल्लां अगर हाँ तीना जो ताजा करन तो कुथी ना कुथी से हाँ जो कुछ ना कुछ यादा जिड़ा न से जोड़ी दिया ना जी यहाँ करने
1: हाँ जी पहले पेड़ पहाड़ होंगे थे ना यार यार उन्होंने नीचे बैठी
0: जी
1: जाते हैं जाए थी
0: जी जी ता सही है ना कि जल्दी कहाँ जो सबक ना मिले तल्दी कहाँ जो समझ नहीं आती ना जी,
1: हाँ जी सही है
0: क्योंकि सबक
1: हाँ
0: मिलना भी जरूरी है
1: जी सारे पेड़ कटाई थे हूँ तो फिर क्या करना
0: जी। पेड़ पौधे यहाँ वास्ते कितने ज्यादा जरूरी है ना। फिर अगर हाँ पुरानियाँ यादा ताज़ा करना लगन तो बढ़िया सारियाँ यादा है ना जी। कच्चे
1: हाँ जी
0: मकाना दी यहाँ गाल करिए ता गर्मी दे मौसम च ज्यादातर कच्चे मकाना च रहना कितना अच्छा लगता था ना जी, ठंडा ठंडा
1: हाँ जी हुण सोचे पक्के कई बनाए कच्चे बनाए होंदे तां ठीक था
0: जी। सोच सोच पर रहे है ना कि यहाँ अपनी सोच जिड़ा से हमेशा चलो अच्छा सोचना भी जरूरी है
1: हाँ
0: आगे
1: जी
0: बढ़ना
1: पहले
0: भी
1: कच्चे में था
0: जी।
1: जान लो कच्चे से था ना सोचे पक्के होने हारे मकान उन पक्के हैं तो सोचे कच्चे होते तो अच्छा था ठंडे ठंडे थे है
0: जी जी कने सही प्यार भावना बिल्कुल खत्म है ना जी की दुवे अंदर
1: हाँ जी प्यार भावना तो जरा नहीं है जी हूँ बस सब अपने अपने मोबाइल ले बैठे कुछ ये नहीं पता एक दूसरे का कौन है कुतु
0: जी। पर थोड़ा दिया जागरूक होना भी जरूरी है ना जी, क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी दा कुन दिया लम्हा हाँ वास्ते यादगार बनी आना है से तो हाँ जो भी पता नहीं है से मैं जो भी नहीं पता है कने आने वाला पल से किस प्रकार रहना है, अच्छा रहना है कि बुरा रहना है सभी पता नहीं है ना जी।
1: टाइम है क्या पता जी कल करे
0: जी
1: टाइम आई है ना
0: क्योंकि टाइम कदी भी यहाँ जो दसी कर नहीं आता ना जी कि कदे आ टाइम होना ऐसे तो अपनी सुई जो टिक टिक टिक टिक तो हाँ आवाज सुन दे होने घड़ी दी तो तिस टिक टिक टिक टिक आती रहती ना जी,
1: हाँ जी सही है
0: समय
1: ना
0: जड़ा
1: कि
0: ऐसे
1: टाइम
0: चलिया रहा, पर आहा किस प्रकार समय के अनुसार चल देन या अपने रिश्तियां जो टाइम दे दे या अब खुद जो टाइम दे दे या बाकी कोई भी काम में से किस प्रकार करा दे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, क्या जेड़ा पिछला टाइम था से वापस नहीं होना से बड़ा अच्छा टाइम था।
0: बड़ा ही अच्छा था ना जी, प्यार भावना थी कि दुवे अंदर
1: जी
0: जी। था पवना जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करगी
1: आज तो सुनाई दिया तेरा मेरा लगन।
0: जी। अच्छा तेरा मेरा लगन सुनना है तो हाँ
1: जी
0: जरूर, तेरा मेरा लगन तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: धन्यवाद जी।
0: जी। ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो
2: हेलो हेलो,
0: हेलो हेलो, नमस्ते जी।
2: सचिन जी नमस्ते।
0: जी स्वागत है जी तो हाँ रेडियो।

0: जी तो हाँ, क्या काम काल गया।
1: मसूरा लाई बेले होयोगे ना राम करा दे।
0: जी अच्छा, उरा लगाई की बेले होई ये।
1: हाँ जी
0: जी ताता तो हाँ बड़े फास्ट हैं जी। जी
1: और
0: और
1: सुबह क्या लाया काम।
0: जी, अली यहाँ तो कोई काम नहीं लगाया। अली यहाँ उरे लगाना भी नहीं लग गयो। अली यहाँ तो कोई काम नहीं। अली पटिया ही बनाई याद है ना जी।
1: अच्छा,
0: जी, तब एक नाशी
1: दो
0: आज
1: चार
0: तो
1: दिन फरमाइशारी आई वाले बोले भी क्या।
0: जी थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी जरूरी होता है ना जी।
1: अच्छा,
0: जी
1: चलो बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा।
0: जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: अरे रंग बिरंगा झाल सुना लिया, बड़े दिन हुए। हाँ
0: जी रंग बिरंगा झाल सुनना है तो हाँ
1: जी हाँ जी।
0: जी जरूर, तुहदी फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा
1: अच्छा जी,
0: धन्यवाद जी तुहदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा।
0: जी तशोताओं तो हाँ सारे जो ये ले करी चल दे न अगली फरमाइश दी, और सुन देने सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

तक्षतों तो सारे सुनिया ये गीत फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अहं जो आई वे चैतड़ू ते कने तिना दा ना वे मंगल जी। मंगल जी तक अहां ये गीत पहुँचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय कीता। अज कने दिने दी अहां गल करिए 26 जून 2026 दी। कने अज शुक्रवार जेड़ा दिन है सभी तो हाँ बना देना। कन्या जहाँ इस दिन जो खास तौर पर कई बना देना सभी ज़रूर तुहाँ तक पहुँचाना है। 26 जून जो हाँ हर साल जड़े से 26 जून जो नशीली दवाइयों का जड़ा दुरुपयोग है कने अवैध तस्करी है तीदी पर जड़ा तीदे खिलाफ जड़े से अंतर्राष्ट्रीय दिवस जड़े से अहाँ आज बना देना। तशो तो विश्व ड्रग दिवस जड़े से अहाँ बढ़ाते हैं कने इस दा मुख्य उद्देश्य जड़े से मादक जड़ा पदार्थ हैं तिना दा सेवन करने दे बारे च कने तिदे जड़ा दुष्ट प्रभाव हैं तिदे बारे च जड़ा जागरूक करना तिदे उपर जड़े से अहाँ ये खास दिन जड़े से बढ़ाते हैं। तशो तो हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा पर अहाँ अपने दिन जो किस प्रकार खास बनाते हैं से यहाँ पर निर्भर करता है। इसी कने यहाँ थोड़ा दे आगे बढ़ते हैं कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चलते हैं क्योंकि तुहां भी इंतज़ार पर बैठे होंगे न कि यहाँ दिया जेड़ा फरमाइश है ना अहाँ तुहां तक कालू दिया पहुँचाते हैं। ये फरमाइश अहाँ जो आई वे व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा ना वे सुनील जी कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोटते तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचा देना तो हाँ सारी भी इंजॉय करा।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो तो शशि कने इसी कने तो हाँ सारे गीत सुनिया दशो तो आज कने दौर दिया हाँ गल करिए तो कुथी ना कुथी हाँ पहले गौ पूजन जड़े ऐसे करते थे पर आज कने दौर की गल करिए बिल्कुल जिड़ा गौ पूजन है से खत्म है या जिड़ा बैल है या गौ है से हाँ जो सड़क च दिखने जो मुल्ला दी क्योंकि हमेशा हाँ अपना जिड़ा फायदा है से दिखा दे हाँ हमेशा अपना फायदा दिखी करी चल दे न कने हाँ ये नहीं सोचते न कि अगला जिड़ा चाहे पशु है चाहे पक्षी है चाहे से इंसान है उस जो भी नुकसान जिड़ा है से ज़रूर हो सकता है हाँ कुथी ना कुथी हर जगह हाँ फायदा दिखी करी चला दे हल पल भर वास्ते जिड़ा है से समय नहीं है चाहे से हाँ वास्ते गौ पूजन है या पूजा पाठ वास्ते समय नहीं है या अपने वास्ते समय नहीं है हाँ हमेशा ये सोची करी चल दे ना कि जिड़ा मोबाइल फोन है सही यहाँ वास्ते सब कुछ है पर कुथी ना कुथी अगर हाँ मोबाइल फोन जो साइड रख दे न कने ना जितनिया भी यहाँ दियाँ कहानियाँ न या जिड़ा कोई भी कहानी जिड़े से यहाँ दे दादा दादी यहाँ जो सुनांदे न तो तीदा कोई ना कोई मतलब या कोई ना कोई जिड़ा सार है से ज़रूर अहाँ जो सुनने जो मिलता है जागरण दी यहाँ गल करिए तो हर कोई अपने अपने अपने घर है जागरण करांदा है मौज मस्ती कर दे सही है कि मौज मस्ती करना भी ज़रूरी है पर कभी तो हाँ जिड़ा तारा रानी है से सुनी तिस दी जिड़ा लोग गाते है से सुनी कि तिस क्या जिड़ा दिस तारा रानी सराने का क्या मतलब है क्या मकसद है हर कुथी यहाँ आज कने दौर दी गल करिए सिर्फ डांस करना डांस करने तक ही सीमित नहीं है हर चीज़ का मतलब समझना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है पर हाँ किस प्रकार आज कने दौर च इन चीज़ों का मतलब समझा दे या क्या फ़ायदे यहाँ दिखा दे या हाँ हमेशा अपना ही फ़ायदा दिखा दे या एक ही दुए अंदर प्रेम भावना जिड़े इसे बिल्कुल ख़त्म है तो शो तो हाँ गल बात करा दी न सभी ज़रूर तो हाँ तक पहुँचानी है आज 26 जून जो जिड़ा हाँ खास दिन बना देन से बना देन नशीली दवाइयां दा जिड़ा दुरुपयोग है कने अवैध तस्करी दा जिड़ा खिलाफ है तिदे वास्ते हाँ अंतरराष्ट्रीय दिवस जिड़ा इसे आज बना देन कने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 जो जिड़े से प्रस्ताव पारित कित्या था कने 26 जून जो ये दिवस बनाना जिड़े से शुरू होया था कने इसका मुख्य उद्देश्य जिड़े से जिड़ा भी नशीली दवाइयां न तिना दी रोकथाम जिड़े से ज़रूर करना है कने अहाँ अपना जिड़ा मन भी व्यवहार है सभी अच्छा रखना है कने क्योंकि नशा जिड़े से तो हाँ सारे जो ही पता है कि नशा अहाँ दी परिवार जो या अहाँ दी फैमिली जो कुथी ना कुथी बिखेरींदा है अगर युवा पीढ़ी दी यहाँ गल करिए तो युवा पीढ़ी अगर नशे दी ओर जाता है तो से अपनी फैमिली दा या अपनी परिवार या अपने रिश्ते न तिना जो कुथी ना कुथी खोइंदा है कने परिवार जो भी अपने बच्चों जो थोड़ा दिया समझाना चाहिए या तिना कने गलबात जिड़े से ज़रूर करनी चाहिए अगर तो हाँ परिवार दे बारे च सोचते न या अपने माता पिता दे बारे च सोचते न या अपना अच्छा भविष्य जानते न तो ज़रूर कुछ अच्छा काम करा अपने सपने जो साकार करा क्योंकि नशे दी ओर अहाँ जानते न तो हाँ अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दे यान इसी कन्ने अहाँ अपनी फैमिली दी जेड़ा ज़िंदगी है सभी ज़रूर बर्बाद कर दे न तो शो तो इसी कन्ने अहाँ आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहाँ जो आई हो वे कांगड़े ते कने तिना दा ना वे पवना जी तक अहाँ एक गीत पहुँचाना है कने तो हाँ सारियाँ भी इंजॉय करना है।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने इस सफर तो तक रहते 2 से 3 बजे तक तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने यहाँ कन्ने गल बात चिड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं कार्यक्रम च गल बात करने वास्ते जिहड़ा हाँ दा नंबर है से जरूर तुह तक पहुँचाई देन। नंबर है 701-8117091। तो इस नंबर पर तुह कॉल करा या

टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तशु तो फिरी ते हाँ थोड़ा दे अग्गे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न तुह सारे भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो वे धर्मशाला ते कने तिना दा ना वे स्माइली जी कने जरूर तिना तक अहाँ ये गीत फरमाइश पहुँचाई कने तुहां सारियां भी इंजॉय की थी। दर्शकों तो सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का सफर तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो हाँ भी जरूर इस सफर जो इंजॉय करते हैं कने अपने जेड़ा फरमाइशी कार्यक्रम है फरमाइशा भी जरूर तो हाँ इस कार्यक्रम च करते हैं। दर्शो तो जिंदगी का जेड़ा सफर है सहाँ जो हमेशा क्या सिखाता है, जिंदगी का सफर अहाँ जो ये सिखाता है कि कदर करना सीखी लिया, क्योंकि कदर करना अगर अहाँ सीखी लेंदे न तो जिंदगी जड़ा से अहाँ जो वापिस जड़ा से नहीं मिलती है ना, जिंदगी चाहे जड़ा लोग हैं सभी अहाँ जो वापिस नहीं मिलते न। कई बार होंगे ना कि अहाँ की तबीयत खराब है तो अगर दवा असर नहीं करती है तो अहाँ जड़ा हाल चाल अहाँ किसी का पूछते न सभी तीस दिन भी अहाँ जड़ा से ठीक हो जाते न। जीवन जड़ा से सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत जीवन च क्या रिश्ता है थोड़ा देर तो हाँ सोच विचार करी कर दिखा कि जीवन च सबसे खूबसूरत जड़ा रिश्ता है से क्या वे। सबसे खूबसूरत रिश्ता ये है कि अहाँ एक ही दुए कन्ने विश्वास रखते न, या एक ही दुए की इज्जत करते न, या भरोसा करते न, तो इस भरोसे जो हमेशा कायम रखते न सही यहाँ वास्ते सबसे बड़ा धन है। कने कदर करना होना जड़े से यहाँ जो जरूर आ चाहिए। जिंदगी का सफर है, जिंदगी का सफर कालू दी है थमी आना है से तुह जो भी पता नहीं है, कने मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है कि आने वाला जड़ा पल है से किस प्रकार जड़े से मेरे वास्ते रहना है या तुह वास्ते। ता ये पल अगर अहाँ इंजॉय कर दें तो कुथी ना कुथी अहाँ अपनी जिंदगी जो भी ज़रूर इंजॉय कर दें। इसी कन्ने तुह जो मौसम की ओर लेकर चलते न, क्योंकि मौसम की जानकारी भी तुह तक पहुँचानी है। कने जेड़ा भी किसान हैं क्योंकि तिना जो भी वैसे भी काम पे होता सहता चाहते न कि बरखा जड़े से जल्दी जल्दी हो कने जेड़ा अली पट्टियाँ बना देन या जिन्हें पट्टियाँ नहीं कुवारियाँ न तो सह तो सोचा थे उन्हें कि अली बरखा ना होवे ताई ठीक है, कने जेड़ा उरे लगान लगे न सह तो जरूर यही सोचा दे न कि बरखा जड़े से हो ठीक ठाक कने हाँ उरे लगाई करी जड़े से बेले हो न। तो धर्मशाला सिद्धबाड़ी के आस पास इलाकों का जेड़ा मौसम है से किस प्रकार रहना है। दोपहर का समय है, वैसे भी तो हाँ सारे जो ही पता है कि दोपहर का समय है तो कुछ ना कुछ मौसम भी अपनी करवट जरूर लै दें, कने घने बादल जड़ा से जरूर छाए न, कने इसी कन्ने गर्ज कने चमक कन्ने तेज बारिश के जड़ा आसार हैं सभी जरूर हैं। कने 21 डिग्री जड़ा सेल्सियस है से तापमान बढ़ना बनिया रहना है। कने तो हाँ भी जरूर मौसम के अनुसार अपना भी ख्याल रखना है, कने अपने जेड़ा काम कार हैं सभी जरूर करने न। कने जेड़ा अधिकतम तापमान धर्मशाला दा 21 डिग्री सेल्सियस है, कने दिने दे तापमाने दी गल करिए ता सेवे सभी 21 ते 22 डिग्री तक रहने दा अनुमान जेड़ा से जरूर लगाया है। कने रात के समय दी यहाँ गल करिए ता तापमान गिरी करी जेड़ा से 16 डिग्री रही जाना है। तो इसी कन्ने फिर त्याँ अगे बढ़ना है, कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है। सुन दिन इसा प्यारी दिया फरमाइश है जो कने थोड़ा दिया कार्यक्रम का जड़ा माहौल है से चेंज कर देन। तो हाँ सारी भी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज। जितने भी श्रोता हैं तिना दी

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत ते फरमाइश इस गीत ते फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का ना है चरणजी कने से रहने वाले न खनियारा ते तिना तक हाँ ये गीत ते भजन ये गीत जिड़े से पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। इसी कने अगला जिड़ा भजन है से यहाँ पहुँचा दें मेघना जी तक कने से रहने वाले न दाड़ी ते।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने दशो तो मैं जड़े से उन्होंने जो बोला था कि अनुमति जड़े से तो हाँ ले लिया तो जरूर हाँ अनुमति लेनी है कने तो हाँ इन्हें रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने बने रहने दशो तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कहने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिक।

0: लाल है।
1: ऐसे क्या लोकमान्य तिलक ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
0: मुझे माफ कर दीजिए।
1: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
0: रोड किसी के बाप का नहीं है।
1: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
2: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
3: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
2: या आपको एक फोन आएगा।
4: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
2: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
4: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
3: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
4: रिसीव करते वक्त नहीं।
3: तो याद रहे,
5: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
6: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
7: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
6: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
8: आप चिंता ना करें।
6: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
8: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
9: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
6: तुम क्या खड़ा हो?
9: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
10: ले जाए पक्का?
9: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
11: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
12: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
13: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
12: हाँ बोलो।
13: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
12: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
13: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
9: गजब बेइज्जती है।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्म।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
7: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

0: अपना ये गादा कार्यक्रम हाँ और इस गादे कार्यक्रम में आउं तुम दस सबीरा तहे दिल थाऊं स्वागत करनो हाँ, हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ, बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा था श्रोताओं जे की तो है सब बाखूबी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आसू होगी अलग अलग जगह था इन अलग अलग श्रोता के नसो आसू होगी कनेक्ट भुंदेहीन आसू होगी बिल्कुल रेडियो रे माध्यम था कि आसो कनेक्ट भुंदेहीन और सभी खास गल सभी अहम गल इस कार्यक्रम रे कि अपनी भाषा मंच है अपनी बोली माँ है कनेक्ट भुंदेहीन और दो अहम गल है कि यह अपनी संस्कृति जो कि आसो इस कार्यक्रम रे माध्यम तो करखर करखर दर्शन दे रहे हैं है ना जैसो है कोई भी असू होगी साक्ष बसेरे जरिए जाए है अपनी वाणी थों कि असो दर्शन दे भून और चाहे अपने लोक गीत थों है दर्शन दे भून ता रेडियो रे माध्यम थों है अपनी संस्कृति जो रोजाना किया सो लक्ष्य होता तक अपनी आवाज़ की असो पहचान दे हिन श्रोताओं और ये सब तुम आशीर्वाद है। चलिए फेसबुक रे माध्यम थों भी यह है कि सो लाइव हूँ ने अचकल और फेसबुक रे माध्यम थों भी यह जुड़ते जुड़ाव हूँ इन दबी है ना चलिए तो जिंदगी है ना बलदा ना कि लाइफ में असो अलग अलग पड़ाव ही ना बड़ा ज़्यादा जरूरी बुंदा हा क्योंकि लाइफ नियंत्रण अगर सीधी चली रहा तो थोड़ी बोरिंग की असो जरूर लगते हा थोड़ा के लाइफ में असो उतार चढ़ाव ही ना बहुत जरूरी है। इंसान एक्टिव भी रहता हा और बहुत कुछ सीखता भी है जो कि जरूरी भी है लाइफ में सीखने वास्ते है ना रोजाना असू कुछ ना कुछ की असो सीखना चाहता श्रोताओं तो हम सचिन कपूर बिल्कुल लाइव और इस कार्यक्रम में इन श्रोतागण बिल्कुल असोगी जुड़ाव रखते हैं और जुड़ गए हैं तो श्रोताओं तो सब भी जुड़ सकते हैं जो नौ श्रोता हैं 7081 8871 709 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करनो तू होगी साझा करनो जनाब 7081 8871 709 पर तो है सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं और अपने क्षेत्र जानकारी हो हमेशा बोल लो कोई ऐसी जानकारी बो कुछ दुर्घटना बछोरी बो क्षेत्र में या कुछ अन्य कोई भी जानकारी बो तो सो भी तो है सो होगी रेडियो रे माध्यम तो जरूर जुड़ी कर किया सो दस सकते हैं और शेयर कर सकते हैं बरहाल लेके चलते हैं तुसो अब श्रोताओं हेरदन की कस गली कस मोहल्ले कस नुक्कड़ थों किया सो कॉल आया किसेरी पहली कॉल आए कुन ऐसा शख्स जो इस आजकल इस कार्यक्रम में सो होगी सभी पहले कनेक्ट लग रहा गुना नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी नमस्ते
0: हेलो नमस्कार जी
1: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: आवाज़ बड़ी घाटी छू कर दी जी
1: नमस्ते सर जी नमस्कार सर जी
0: हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी
0: आवाज़ बिल्कुल ही नहीं छूँ जनाब
1: और ठीक ठाक ना सर जी तुसा
0: हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया बड़ी दूर थो इच्छू कर दी आवाज़ जी चलिए ठीक है जी क्या फरमाइश है तुंदी बाकी गल तो मैं ना कर सकते तुसो कि जो कि आवाज़ मुंजो ना होनी कर दिया लेकिन क्या फरमाइश है तुंदी क्या होना चाहते हैं तो है
1: गाना सुनाई ने सर जी रेखा ठाकुर दी आवाज़ कन मनोरमा ठाकुर दी आवाज़ से गाना चिट्टा तेरा चोड़ा काला डोरा डोरा
0: क्या गीत दसो जी तो है
1: चिट्टा तेरा चोड़ा काला डोरा ओ शंभुआ हत्था सोठियो
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: चिट्टा तेरा
1: चोड़ा काला डोरा
0: ठीक है जनाब जरूर
1: ठाकुर दी आवाज़
0: जी जी जी जरूर होना ले जी तुसु
1: ठीक है सर जी धन्यवाद सर जी
0: धन्यवाद जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते आइए शो तुम कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़ेंदे हैं और बहुत सारी अन्य जानकारी हैं जो अस तुस होगी कि असो साझा करनी तुस होगी दसनी हैं श्रोतों और सोगे सोगे तो सब भी जुड़ी सकते हैं जनाब 7081 8871 709 पर कॉल करे करे तो चलिए धर्मशाला रा मौसम की असो जानी लेंदे हैं श्रोतों इस समय की असो तुको पता अमूमन मतलब 20-22-25 दे देंगे सो धर्मशाला रहा मौसम रहता आज हालांकि इतनी ज़्यादा धूप है ने जो ना मोड़े कभी धूप कभी छा तो इस समय 21 डिग्री सेल्सियस रहे आसपास की सो मौसम हाश होता हूँ और न मेरी गल करूँ जितनी अंग्रेजी में है ह्यूमिडिटी बोलते हैं तो 82% इस समय ह्यूमिडिटी है तो चलिए जी है गीत सुनते हैं तो सब भी जो है प्यारे दे आगाज कर लेते हैं इस गीत सो कि बनी रही तो सब श्रोता आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही हो गूंज

0: हाँ इधर करके कुल करना होना आ जाए।
1: जो तुंदी फरमाइश बुनी तो देंदा है रेगुलर श्रोतन और इस कार्यक्रम रहे हमेशा जाने जाने भी तुसु मौका मिलता या जाने जाने भी समय लगता तो है जरूर अपने इनपुट्स दिन देन और कार्यक्रम बन देन सोगी।
0: धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक
1: जी
0: यू सो मच, बड़ा सदरों ने बड़ा।
1: फरमाइश जी मुझे ये लगता किया है तुसु बड़ा करीबी जान देन ता तुंदी फरमाइश सोई बंदी कामल नहरी रहा जो आ गई था।
0: हाँ विरासत, विरासत विरासत
1: हाँ जी
0: विरासत।
1: विरासत विरासत चलिए आया आज थोड़ी फरमाइश तो है चेंज करिया। ओन दाता
0: हाँ
1: जानदा रांझू डंगिया बोंदा इना लोकां दे जली जांदे सीने माए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वहां डेंगू उड़े ज्यादा ना आईडी, और डेंगू उड़े वेर बंदा,
1: अच्छा
0: और जो डेंगू उड़े वेर बंदा हुए हैं।
1: अच्छा जी ये सुनील राणा जी ये भी गौरा नॉइस उती था हूँ अक सो भी सो तो होना चाहते कि जो तो हूँ दिन पुराना साइल री आवाज में सो होना।
0: वो नकला
1: हाँ जी
0: सो नकला
1: कुंडे ने जी
0: नकलना उन नकल होने
1: आप पुराना जो हूँ दे तो है।
0: कोई होना नकलना उन्हें नकला सो
1: अच्छा
0: नकला सो नकला
1: जो पुराना हुंदे तो है ओंदा तो जानदा सोई हुन्ना ना जी तुसु।
0: साहिल कपूर, साहिल कपूर।
1: ठीक ठीक है जी ठीक है जी ठीक है
0: ये नकल होने का सही, नकल नकल अंदेगी नहीं।
1: जी जी जी जी ठीक
0: नकल नकल
1: है जी धन्यवाद
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू जी
0: नकल
1: जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और फरमाइश दौर के सो धीरे धीरे पूरा भी कर देन। चली चल देन चिट्टा तेरा चोला काला डोरा एक गीता री फरमाइश है इस गीता जो पूरा कर देन फिर कुछ एक जानकारी की सो तो सो गए है शेयर कर देन साझा कर देन और फिर तत्व बाद श्रोतों बिल्कुल लेकर चल रहे ले तो सभी जो इस प्यारे दे गीता री किनारी और वापस मूल दिन शतों इस गीता थाओं बाद इन दे करमचंद जी थी है जो कि ने नौडरानी मंदिर रे निवासी थी है और बिल्कुल यारे घरे बैठ हूँ मतलब घरे रखा है ना और फिलहाल होनंदन ये प्यारे दे गीत।

चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ा है ना, और बड़ा ही प्यारा दे गीत ऐसा भी हूँ, चिट्टा तेरा चोला काला डोरा, शतो रेखा ठाकुर और मनमोहर राम ठाकुर री आवाज़ माँ की आसो है प्यारे दे गीत सभी रेडियो सेट में हूँ तो शोतो तो ऐसा जरूर बनी सकते ना। सो गए करमचंद जी जुड़ रहे थे जो कि नियर नौटरानी मंदिर है निवासी हिंद त्यारी फरमाइश थे ओंदा ता जांदा रांझू डंगिया बोलता है ना विरासत इन्हें फरमाइश करी थी। ताइए जी कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगू बढ़ देना है और कुछ एक खास जानकारी श्रोताओं तुस हो गया है शेयर कर देना साझा कर देना तथों बाद फिर फरमाइश किया सो जरूर पूरी कर ले है। चलिए जानकारी री और लेके चल देना। अब क्यू आर कोड थो मुलना हाँ श्रोता हूँ डी पूरा राशन जी बिल्कुल। अब तो सब सोचो करते बुने अब नोई कोई बीमारी चले आए कि नोई कोई मुसीबत है सुवास्ता चले आए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा मतलब आसान दे आ जो कि तो है बहुत सारी ऐसी जगह बंदा कि जहने ब्याह है गंद इनता डिपो वाले बंदन कि सर्वर डाउन और सर्वर डाउन आता सो राशन किया सोना देना जाए सो डिपो वाला तुंदा कितना भी खास को ना बोआ सो सर्वर डाउन बहुत राशन ना देता फिर तुंदे घरे जाए चोल बून जाए ना बून तसी हो कोई मतलब नहीं है गला तो है ना। जाए दाढ़ी बून जाए ना बून तसी कोई मतलब नहीं है। जाए चीनी बोआ कि ना बोआ ना मतलब कोई भी तसी हो। अब जो निर्णय सरकार आ रहा श्रोता जो निर्देश जारी हुए है ना सो इनकी सर्वर डाउन की समस्या सुलझाने तक व्यवस्था करने वे निर्देश क्या ना सो जारी करी देते हैं जी बिल्कुल श्रोता हूँ। तू सब भी दसना चाहता कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी रह चलते प्रदेश में कई क्षेत्र में पिछले त्राय दिन तो उपभोक्ता क्या ना सो डिपो में तीनों डिपो थो राशन किया सो प्राप्त ना बच्चों करता पिछले त्राय दिन तो कई क्षेत्र ऐसे ना इंदा हिमाचल प्रदेश रहे कि जड़ी डीपू थो तीनों राशन ना मोड़ो करता कजो क्या प्रॉब्लम है कतियों ना मोड़ो करता कि सर्वर डाउन है जनाब इति वास्ते तीनों ना मोड़ो करता हा जी बिल्कुल। और अंतिम सप्ताह में सर्वर डाउन होने थो राशन लेने जो पुजू करते इंदे उपभोक्ता जितने भी उपभोक्ता बोले सो बड़ा निराश इन और निराश बुझ करके सो वापस घर जो गच्छू कर दे इनकि सर्वर डाउन है आज भी चले गया सर्वर डाउन है दुत्ते भी चले गया सर्वर डाउन है परोए भी चले गया तो मुसीबत इच्छु करते हैं श्रोताओं। तो उसको दसना चाहता हूँ कि उपभोक्ता भी दिक्कत जो हृदय खाद नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग निर्देशालय अब डिपो धारका जो कि आसो क्यूआर कोड रहे माध्यम तो राशन वितरण करने रहे निर्देश के ना सो जारी करें जनाब। जारी निर्देश रहे बाद अब डिपो धारक राशन कार्ड पर लग रही क्यूआर कोड तो राशन वितरण करना है। विभाग तो मिली जानकारी रे अनुसार आधार गल करूँ ता सर्वर ठप भूने रे कारण डिपो में राशन वितरण व्यवस्था बाधित किया सो बच्चू कर दिया यानी कि अब समस्या खत्म है। अब जो राशन कार्ड में एर्रो बुने तो है क्यूआर कोड लग रहा होना है ना क्यूआर है सब जान देना पर जितने इन दे वे बुजुर्ग हूँ कर देना तो है एर्रो बुना कि राशन कार्ड में गया सो हल्का ही ना काला काला बुंदा साइड अंदर है ना ये बनरो बुंदा है तती अंदर अब स्कैन करी करी किया सो निर्देश अले जा रही बुन जी है पूरे बुझगन दे प्रॉपर राशन के सो असू मुड़ सकता है डिपो वाले बहाना ना मारी सकता जनाब की सर्वर डाउन है तो दुत्ता ले गया अच्छा राशन सर्वर डाउन ना तो प्रो ही ले गया अच्छा राशन ऐसा बहाना वह चलना है ना जी। विभाग रहे मानना कि उचित मूल्य भी दुकाना वे विक्रेता उपभोक्ता वे राशन कार्ड पर लग रही क्यूआर कोड जो स्कैन कर पात्र उपभोक्ता री पहचान

सुनिश्चित भुचगन दिया जत्थों राशन वितरण भी प्रक्रिया जारी रह सकती है। चलिए जानकारी रहा पिटारा शोधों में चलते रहना, तो सब बंडो ने समय आरजे सचिन कपूर सोगे और वेड़ी गुंजन सोगे, बिल्कुल वेड़ी गुंजन रही ऐसा गूंज सोगे तो हैं बने रहे शोधों। इस तरीके रही अपडेट्स तुसो जरूर मुलदी रहनी हिन अपनी गादी भाषा मंच। चलिए चल दिन और लेके चलते तू सभी जो अब इन बड़े माननीय सम्मानजनक हिन जी, बिल्कुल करमचंद जी यहाँ रहना और हूं चाहते ने गीत आंदा तो जानता वाजू डंगी बोंदा, यानी कि सिर्फ ये गीत ना विरासत इंजे दसो तो विरासत में बहुत सारे गीत इंदे

ਸ਼ੋਦੋਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈੱਟ ਮਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਨਾਬ 7018889 ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਗ ਮੌਕੇ ਫਿਰ 7018889 ਪਰ ਤੁਹੇ ਸਭ ਸ਼ੋਤਾ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ करमचंद जी ये फरमाइश थी और है करे हाँ पूरे थोड़े फरमाइश का दौर ये चलते रहना हाँ शो तो जानकारी का दौर के सो भी ये चलते रहना हाँ जानकारी तुसे तक जरूर पुजू कर दी होनी और खासकर ज़्यादा खुशी पुजगन देना शो तो जाना अपनी ही गादी भाषा अंदर जानकारी पुजगान अपनी ही गादी भाषा अंदर के असु जानकारी मुड़गान और इन वीडियो रे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो इस गल चो बड़ा थैंक यू बोल देन खासकर जो बुजुर्ग ने सो बड़ा थैंक यू बोल देन कि असु यह मतलब ना खबर हूँ ना असूल टेलीविजन आ ना सूल है फोन आ सिर्फ इंतजार करते हैं कि कहने चोर बजन और कहने इंदा अपना गादा कार्यक्रम किया सो चला और तती अंदर क्या क्या खबर इंदी सो सो पता लगेगा तो चली जी इंदी भी कोशिश रही है श्रोताओं की सटीक जानकारी किया सो इंदे मनु तगर पुजा है ना चलिए अगली जानकारी के अंसो तुस हो गया है साझा कर दें श्रोताओं निरीक्षण रहे दौरान पता लगो है श्रोताओं ये मामला सामने आ कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो 100 गज रहे दायरे अंदर किया मतलब बहुत सारी ऐसी दुकाना हैं जो स्कूल रहे 100 गज रहे दायरे रे अंदर किया सो तम्बाकू सिगरेट बीड़ी सिगरेट किया सो बेचू कर दे हैं तो ये दुनिया वास्ते बहुत सटीक जानकारी है सब किया सो जरूर होने लिया और आगो में यह जानकारी जो किया सो जरूर शेयर

0: गल कुछ ऐसी है कि आशुतोष गल कुछ ऐसी है कि निजी स्कूल जो भी आदेश पूछ गया हिन कि तो है सब किया सो मतलब आके बोर्ड ला बार कीड़ी तम्बाकू सिगरेट बेचना किया सो 100 गज रहे दायरे अंदर किया सो तो है ना बेची सकते हैं है ना अगर बोर्ड किया स्पेसिफिकली बोर्ड किया सो स्कूल ला बार भूना छिंदा हा और तथ्यों बाद गए सो स्कूल बहुत सारे मामले में ऐसा हेरे गोआ कि स्कूल स्कूलर बार भी गए सो बोर्ड ना लग रहा केड़ी 100 गज रे दायरे में बीड़ी तम्बाकू रो सेवन किया सो ना करना है ना। और ये बहुत ज़रूरी बुझे गो हा अगर जितने भी स्कूल ने तीन बोर्ड ना लग रहा तो सब भी पहले सो बोर्ड ला लिया और जियारी भी दुकाना हिन जो बेचते हिन तम्बाकू सिगरेट खैनी चैनी जितने भी ये सूखे नशे इन्हों बेच दे ना तो सो भी किया सो जरूर तीनों बेचना किया सो बंद कर दिया है ना। मतलब नियम निकलिया और इस अधिनियम रे 2023 धारा 6B वे अनिवार्य अनुपालन जो सुनिश्चित करने वास्ते प्रदेश वे स्कूल जो कि सो 30 जून तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने वे आदेश क्या ने सो जारी बुझ गया ने 30 जून तक सभी स्कूलों में चेतावनी बोर्ड किया सो लगना अनिवार्य है जनाब। ता चेतावनी बोर्ड किया सो तुम दे स्कूल बार अब लटके गाने चिंदा हा साधारण भाषा में बोलूँ ता है ना। ता चलिए जी उल्लंघन अगर तो है करो ता उल्लंघन पाए जाने पर किया सो स्कूल प्रमुख रे विरुद्ध किया कड़ी कार्रवाई बोली है जनाब है ना जी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक प्रधानाचार्य और हेडमास्टर निर्धारित चेतावनी बोर्ड लगाने 100 गज वे तम्बाकू मुक्त क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने सो और नोटिस जारी बुचिक छू रहा व्यक्तिगत रूप थो जिम्मेदार बनेगा ना वे निरीक्षण अधिनियम रे दौरान किसी भी प्रकार रा उल्लंघन पाए जाने पर किया सो संबंधित विद्यालय प्रमुख रे विरुद्ध किया सो मैं दसो कि धारा किया सो लगेगा ने हाँ ता नियम रे तहत कार्रवाई किया सो बुचेगा ने हाँ तो जरूर लाए लाइन जी जनाब। तो सब बन रहे समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन सोगी और इन द्रोतागणा सोगी कनेक्टेड हैं पुजन कुंड बल्लुंदन। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते जी, कैसे
0: हेलो नमस्कार जी।
1: आप? हेलो नमस्ते, मैं
0: ठीक है जी कुंड बल्लू कर दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन।
1: साक्षी बोल रही हूँ, सुनिए हरकत हुई थी। हाँ
0: हाँ जी जी बिल्कुल बल्ला जी क्या फरमाइश है तुंदी।
1: माता का भजन सुना दो, संतोष की माता का भजन।
0: अच्छा
1: हाँ जी, हाँ
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले धन्यवाद
1: जी,
0: जी धन्यवाद। चलिए शो तो इस प्रकार होगी जानकारी रा सिलसिला जानकारी रा पिटारा की असु असु ये खोल दे रहना हाँ मूल दिन थोड़ी देर बाद फिलहाल कर दिन शो तो गीत इच्छु कर दिन ता गीत तारी फरमाइश की असु पूरी जरूर कर दे हिन ता आइया अपनी सभी श्रोता जो लेकर चल दें श्रोतों इस गीतारी किनारी बने रहा जुड़े रहा मिले रहा और हंसते रहा मुस्कुरंदे रहा नचंदे रहा फराटी।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বে টিউন করো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনিগ পাগান সো চল রেন তা মুকে ফিরে বহুত বহুত স্বাগত জি সবি শ্রোতারা হার্দিক অভিনন্দন হা কার্যক্রম ইন্দি আপনিগ পামান क्या हाल चाल ने तुंदे उम्मीद करनो खरे बुने खुश बुने तंदुरुस्त बुने और मस्त बुने हिन ये सब गल्ला अगर तुंदे जीवन में तो है इम्प्लीमेंट करी ली यानी कि इम्प्लीमेंट रा मतलब है कि ये गल्ला तो है अपू पर पाई ली न अपू पर तू इन गल्ला पर निर्भर बुझ गया न तो जिंदगी बड़ी आसान लगती और जिंदगी बड़ी प्यारी लगती ली चलिए फिलहाल तो है लेकिन चल दे तू सभी जो अब कुछ एक और जानकारी रिकुनारी शो तो 10 जुलाई तक HRTC कर्मचारी जो मिलना 45 करोड़ भी देनदारी 150 किलोमीटर था अधिक लंबा रूट पर अब फ्रंट सीट पर बैठना पैना परिचालक जो हड़ताल खत्म लेकिन 6 महीने तक लागू रहना ये एक्शन शो तो 6 महीने ही वेद रहना HRTC री अस्थाई भर्ती जरूरत पड़ने पर एक या सोहदन चालक और परिचालक चालक जो देते है आधे दिन आवे 750 रुपया दिहाड़े पूरे दिन आ रही 1500 रुपया ठीक भैया है ना 30,000 रुपये तो बनेगो सीधा सीधा लाइ लिया जनाब साहब तो है भाई अगर वैसे 30 दिन तो लगने नहीं लेकिन जो ये समय न जाने क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा लेकिन किसकी रिमांड में क्या चल रहा किसकी भी महीना क्या चल रहा तो अगर 4500 रुपये अब माफ़ करा अगर 1500 रुपये देना रहा मोड़ो कर दे तो 45,000 रुपये महीने रहा बचेगो है ना तो जो बेरोजगार ने तीन वास्ते तो 1500 रुपये देना रहा बड़े भरे फिलहाल अब डिसीजन किस प्रकार रहे बंदे क्या डिसीजन बंदे सो इतना बाकी है लेकिन हैया जी सुनील राणा रा नवा गीत होना हा लेकिन ये कौन बल्लू कर देन कड़ी था बल्लू कर देन ये इं सुद सुने हा। अच्छा आशा जी चलिए आशा जी जो जरूर हुन देन आशा जी उनकी फरमाइश में ये ज़रूर है वैसे तो है दाड़नू रे निवासी और अब हम बोलेगो घड़िए रे निवासी तो है शायद रक्कड़ या फिर पदना घड़िए रहा लेकिन चलिए दाड़नू रे तो है निवासी हिन भी और थी भी और हिन भी है ना अशोतों कुछ इस प्रकार की जानकारी हाँ कि 10 जुलाई तक की SRTC कर्मचारी जो मिलना 45 करोड़ री दिन दरिया है ना 150 किलोमीटर तो अधिक लंबे रूट पर के है सो अब फ्रंट सीट पर बैठना पैना परिचालक जो हड़ताल खत्म लेकिन 6 महीने तक लागू रहना है शो तो इस प्रकार हो गए अन्य जानकारी के अनुसार भी तो सूतक रहे पंचंदन जी आए दसो शो तो सो कि प्रदेश में कई स्कूल आवे 100 गज रहे दायरे में के सो बिकू करता तंबाकू उत्पाद जितने बारे है विस्तार होगी तो सो क्या सो जानकारी देती है राज्य सहकारी बैंक रे कर्मचारी 4 साल भी सेवा पर ग्रैंड पीक वे हकदार श्रोतो QR कोड थो मिलने अबे डीपू जो राशन डीपू में किया सो राशन मिलना हाँ जो राशन कार्ड में QR कोड लगुरा भुंदा ठेरे जरिए श्रोतो हरमूज खुलने थो मिले बड़ी राहत शोतों पर आपूर्ति व्यवस्था चुकाने भुने अधिक कीमत शोतों और इति सो गया अन्य दूसरी जानकारी शोतों हिमालय क्षेत्र में के असो बाढ़ और भूकंप रा खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ू करता और इंदा था वैसे 5 जोन असो था ज़्यादा खतरा है मेरिट व आधार पर ही भुने अब टीममेट हेल्पर री प्रमोशन शोतों HPU में 30 जून तक की आसो एडमिशन खुली हिंद तो कराए सकता है बिजली बोर्ड में 133 SDO जो नई जिम्मेदारी के ना सो मोड़ी हिंद शो तो मिड डे मील थो मजबूत बोचो कर दे हा आजीविका भी 1000 थो अधिक परिवार जो मुड़ कर दा हा रोजगार रा सहारा तो कुछ शिक्षा में बढ़ना हा हिमाचल कश्मीर रा तालमेल शो तो
एगो जानकारी थी जो है तुझ तक पहुँचा ही हिम शो तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे। तो चलिए जी आशा जी री फरमाइशा और हाँ आशा जी खाटी हो न वह खाटी, चलिए खाटी बड़ी प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह।

पैसे ने बंदे थी है अबे पैसे इनता इंसान घूमना ना घूम ही ना सकता है ना। चलता ना वक्त रह पई है कुछ इस प्रकार होगी ही कि अशो तो सो चलता हा समेरा हे पई है ना ये कदी ठीक ना चली सकता अशु वास्ते। तो बाकी चलिए जी दिल थोड़ा चाहते कि समेरा पई है कि अशो बढ़िया चला खरा चला और लगातार चला। अबे समय भी पुछेगो हाँ तुझसे तो इजाज़त लेने रह जो कि इतों बाद अबे और भी फरमाइश इच्छू कर दी लेकिन अबे समय आए फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो इजाज़त ले लेंदे हिन शो तो और इजाज़त लेना तो ज़रूरी है अबे है ना क्या करना कुछ एक शोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन तो हुणु करदन और आऊँ तुंद अपना नाचीज सचिन कपूर हा कुछ एक खास जानकारी होगी किया सो ऐसा है तुसु सो की किया तुसु तकर किया सो जानकारी पहुँचाई हिन शोतों और अभी कुछ खेल समाचार री जानकारी के अनसो तुसु तक पहुँचन दे हिन। आज आयरलैंड रे खिलाफ पहला T20 संजा 6 बजे थो किया सो शुरू हो चुगाना हा मुकाबला शोतों तो ज़रूर 6 बजे थो किया अपनी टी वी स्क्रीन में बैग अच्छा या मोबाइल स्क्रीन में बैग अच्छा और आयरलैंड रे खिलाफ किया सो आज भारत इंदे भारत आ किया सो पहला T20 आए किया सो खेलना हा शो तो वैभव सूर्यवंशी पर नज़र सभी रे भुने जो कि 15 साल रहा बच्चा 13 साल रहे IPL में खेलना लगी पीरो और अब ICC वे के रूल रेगुलेशन ने सो कुछ अलग भुंदे इवन की ICC है किया सो वैभव सूर्यवंशी जो किया सो अलाउ करो वैसे अलाउ ना बंदा तस्यो अलाउड करो कि सेरे माता पिता के ना सो तस्गी रह सक दिन को क्योंकि 15 साल ला रहा बच्चा ना हालांकि एज इज जस्ट अ नंबर बट एज इडी मैटर जरूर कर दे हा सो इमोशन के ना सोगी भूना चिंता है सो पेरेंट रा सपोर्ट के सोगी भूना चिंता हा ता आइलैंड होगी मुकाबला हा अबे डेब्यू भूना बाकी असूर्य वंशी रहा सो हेरना कि इस सीरीज में करी दे डेब्यू या फिर जो अगली सीरीज खेलने हाँ भारत तदी मेरा डेब्यू बुंदा इंतज़ार और निगाहें क्या न सो बिल्कुल ततीपुर हिन के कहने सूर्यवंशी रह गया सो वैभव बुंदा बहुत ही कमाल रहा बल्लेबाजा बा कमाल बल्लेबाजी सेरी और वाकई में ही श्रोता हूँ मतलब शब्द घट पे गण सेरी तारीफ करते करते तो बहरहाल हाँ सचिन कपूर है तुसु तो ले लेनो आप इजाजत जो कि गंदे गंदे क्लाश फरमाइश था खाटी थो आशा जी रही सो पूरी करनी है सुश्रोतों तय बोलना चाहूँ हाँ हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे और माता पिता की सेवा हमेशा करते रहे माता पिता जो खुश हमेशा रखा श्रोतों प्रकृति का ख्याल किया सो जरूर रखा श्रोतों और बुजुर्ग की सेवा किया सो जरूर करा श्रोतों इन शब्द था हूँ सचिन कपूर लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मा।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मा, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: वाह, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात। तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
3: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,

0: एक्सक्यूज मी सर।
1: हाँ
0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा रिजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था।
6: अपने पन को नहीं मार सकता।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से

आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दर्शकों, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरू हो गया है गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। फ्रीक्वेंसी है 91.2 एफएम और आप सुन रहे हैं अपने फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो कुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं आज है 26 जून की इस संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारी उन श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो जो कि किसी न किसी खास वजह से अपना आज का ये दिन मना रहे हैं। और हम किस रूप में इस दिन को मना रहे हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है आज, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और पिछले कल हमारे ही आसपास में धर्मशाला में क्या क्या हुआ है उसके बारे में भी आज आपसे बात करेंगे।

बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम रहते हैं आप सभी के साथ, करते हैं आपसे लाइव बातचीत। और साथ में ये भी बता दें कि अब तो आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी लाइव देख पा रहे हैं, यानी कि देश विदेश तक तो पहले आप हमें सुनते ही थे रेडियो के माध्यम से, हमारे गुंजन ऐप के माध्यम से, और अब फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप हमें दूर दूर तक देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अब कुछ भी बतियाने या मौसम के बारे में जानकारी देने से पहले लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा गीत। मैं बोलने वाली थी अंतराल, लेकिन हाँ वही म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं हम। वाकई में ये छोटा सा ही गीत है।

श्रोताओं, सुबह से जब मशीनरी हमारी चली होती है तो इसको भी कभी ना कभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, और अब ये रेस्ट मांग रही है तो कोई बात नहीं। अभी नागिन दिन गिन गिन गिन कर रही थी ना, तो देखते हैं ये दोबारा कब वापस आती है। तब तक हम बतिया लेते हैं आपसे और मौसम बता देते हैं आपको कि इस समय मौसम का क्या हाल चाल है। तो फिलहाल वापस आ चुकी हैं ये नागिन जी, सुन लीजिए।

तो आज तो हमें लगता है कि बस ऐसा ही कुछ रहने वाला है, या तो हम गिनेंगे या फिर ये गिनेंगी। कोई बात नहीं,

जी 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो ये गीत अभी आपने सुना, बहुत ही अच्छा गीत था। मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा सा डिफरेंट सा ये गीत था, आस्था गिल और अक्षा की आवाज़ में। फिल्म का नाम था वायु। और अब आपको लिए चलते हैं हम बाहर के मौसम की ओर। तो धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान इस समय बना हुआ है 29 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं हवा में नमी की बात करूं तो 63% तो नमी है। और हाँ, जो अनुमान जताया जा रहा था वो कुछ ऐसा है कि आज मुख्य रूप से हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाए रहने का अनुमान था। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। अब रात तो अभी आएगी तो तब देखेंगे क्या होता है, और दिन भर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा था पहले। लेकिन धर्मशाला के पल पल बदलते मौसम के बारे में कुछ ज़्यादा खास कहा नहीं जा सकता है। ठीक, तो हम कल के बारे में भी बात कर लें कि अधिकतम तापमान ये बता रहे हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस जाने की उम्मीद है और न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस, और बारिश के आसार हैं, जैसे कि आज भी बारिश के आसार थे लेकिन शायद हुई नहीं। अब रात को क्या होता है वो तो रात का ही पता चलेगा। और आने वाले दिनों की बात करें तो सप्ताह भर रुक रुक कर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का मौसम बना रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है।

अब पलकों की छाँव में इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है और आइए सुनते हैं। और जानते हैं कि अब डाकिया जो लेकर आया है उसमें आगे क्या डाक है।

जी पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो भाई हमारी क्या डाक आई है बता दें आपको। तो हमारी तरफ से ये डाक है आप सभी लोगों के लिए कि आज है मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और साथ ही साथ यातना को के जो पीड़ित लोग हैं उनके समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही है। तो दोस्तों आज तारीख है 26 जून जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया और दिन है शुक्रवार का। आप सभी सुन रहे हैं हमारी संध्याकालीन सभा और कैलेंडर पर तो ये सिर्फ एक तारीख हो सकती है लेकिन आज का दिन हमारे और आपके भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा है। आज है जैसा कि मैंने कहा ड्रग वर्ल्ड ड्रग डे या फिर ड्रग अब्यूज डे। तो अगले कुछ घंटों हम यही बात करेंगे कि कैसे ये जो नशा है हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है और कैसे पर्दे के पीछे बैठे ड्रग तस्कर हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं।

तो बस बने रहिएगा मेरे साथ। बता देती हूँ कि इस बार का जो विषय है वो है ब्रेक द साइकिल, यानी कि हमें इस कड़ी को तोड़ना है। क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि नशा सिर्फ एक लत है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा काला कारोबार छुपा हुआ है। और इस साल ये जो ब्रेक द साइकिल है ना, ये संयुक्त राष्ट्र की थीम है इस बार की। और हैशटैग स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी संगठित अपराध के चक्र को तोड़ें, तो ये हैशटैग दिया गया है इस बार। इस बारे में और भी जानेंगे हम कार्यक्रम में आगे। फिलहाल आपको एक गीत सुनवाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो शायद कुछ बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि टॉपिक भी आज का कुछ वैसा ही है तो बहुत इस तरह का कि जिस पर बात की जानी चाहिए और खुलकर बात की जानी चाहिए, लेकिन हमें भी थोड़ा सा सोचना होता है आपके मनोरंजन का। और आज थोड़ा सा हमारा ये जो दोस्त है कंप्यूटर महाराज, ये भी थोड़े से नासाज हैं, थके हुए हैं, तो इनका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। चलिए आशा भोसले की आवाज़ में आपको हम गीत सुनवाते हैं ढोंगी फिल्म का।

ढोंगी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और जब आप इस तरह का कोई नशा खरीदते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि दिल, जिगर, फेफड़े, क्या सब कुछ ही आप अपना दाव पे लगा देते हैं। यहाँ तक कि आप अपना परिवार उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं तो फिर समाज का तो क्या ही सोचेंगे, और देश तो बहुत दूर की बात है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई एक पुड़िया या फिर एक नशीली दवा खरीदता है तो उसका पैसा सीधे कहाँ जाता है? सीधे तौर पर आतंकवाद, अवैध तस्करों की हथियारों की तस्करी और देश विरोधी ताकतों के पास चला जाता है। ड्रग तस्कर हमारे स्कूल कॉलेजों के बाहर मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं और इसकी जो शुरुआत है वो मजे या शौक से होती है, क्योंकि कई बार बच्चे शौक शौक में ये सोचते हैं कि इसमें क्या ही मज़ा आता होगा, कि ये सब लोग लेते हैं तो हम भी चलो लेकर के देखते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। छोटी छोटी चीज़ों से जैसे सिगरेट ले ली या फिर बीड़ी ले ली, शुरुआत इसी तरह से होती है। फिर उन्हें लगेगा कि यार इससे तो लत हमें लगती नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और इसमें डीप जाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर और अब यहाँ से तो मैं कहना नहीं चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसे कि लोग लेते हैं या बच्चे शुरुआत करते हैं, ताकि यहाँ से जो लोग सुन रहे हैं कहीं वो भी ऐसा ना करें कि चलो ट्राई करते हैं कि ये क्या होता है। पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो बच्चे ट्राई करने के लिए लेते हैं और फिर बड़े नशों की तरफ चले जाते हैं। और इस छोटे से दिल की जो बात है ना, वो मान जाते हैं, क्योंकि दिल बहुत कुछ कहता है ना। तो फिर ये शुरुआत मज़े या फिर शौक से होती है और कब ये जानलेवा दलदल बन जाता है इसका पता नहीं चलता। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में लगभग 29 करोड़ लोग ड्रग्स के जाल में फंसे हुए हैं और ये संख्या कई देशों की आबादी से ज़्यादा है दोस्तों। और हमें इस सप्लाई चेन को तोड़ना होगा, जैसे कि मैंने अभी गाने से गीत से पहले आपको कहा था कि ये इस बार का विषय, मतलब थीम भी है, और इस पर बात करेंगे हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल हम आपको डेजिग्नेशन बताते हैं, अपना एक छोटा सा अंतराल भी लेते हैं और उसके बाद आपको सुनवाएंगे एक गीत।

खूबसूरत गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और दोस्तों आज हम मुहर्रम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुहर्रम इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है जो इसे इस्लामी नववर्ष का आधिकारिक प्रतीक बनाता है। अरबी मूल से लिया गया है ये शब्द जिसका अर्थ है निषिद्ध या फिर पवित्र। ये इस्लाम के चार सबसे पवित्र महीनों में से एक है और जिसके दौरान संघर्ष और लड़ाई सख्त वर्जित है। वैश्विक मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संप्रदायों में इसका अत्यधिक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है।

और सुन्नी दोनों मुस्लिम जो परंपराएं हैं ये उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे शिया समुदाय के लिए मुहर्रम मूल रूप से शोक का एक गंभीर समय है, ये पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन इब्र अली की शहादत में मनाया की याद में मनाया जाता है, जो कि अपने परिवार और साथियों के साथ 680 ईस्वी में कर्बला की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अत्याचारी उम्मयद खलीफा यजीद के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इमाम हुसैन के इनकार को उत्पीड़न के खिलाफ न्याय, सत्य और मानवीय गरिमा के लिए दृढ़ रहने के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और सुन्नी मुस्लिम परंपरा के अनुसार सुन्नी समुदायों के लिए मुहर्रम की 10 तारीख कृतज्ञता और आध्यात्मिक चिंतन के दिन के रूप में मनाई जाती है, और यह परंपरागत रूप से उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब ईश्वर ने पैगंबर मूसा और इसराइलियों को मिस्र के फिरौन के अत्याचार से बचने के लिए लाल सागर को दो भागों में बांट दिया था।

इस गीत के बाद एक बार फिर से करते हैं आपसे बातचीत। और आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस NCOE धर्मशाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशा मुक्त समाज में निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो हमारे CM जी मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि TV और कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो कम करें और क्रियाशील रहें, साथ ही स्क्रीन टाइम कम कर दें, खेलें, चलें, दौड़ें और सक्रिय रहें। नशे को ना कहें, नशे से दूर रहने का संकल्प लें और ना कहना भी सीखें। हम जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा ही कि हम ना नहीं कह पाते हैं किसी चीज़ को, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। तो हमें जब हमें पता होता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो हमें ना कहना भी चाहिए। साथ ही नियमित व्यायाम और योगा भी कर सकते हैं। और अभी अभी ही हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी निकला है, जिसमें ये देख करके मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था कि जब मैं इंडोर स्टेडियम गई थी तो वहाँ पर बहुत कम लोग थे। ऐसा लग रहा था औपचारिकता मात्र वहाँ पर लोग थे, लेकिन हाँ, जब हमारा अभी ये अनाउंस ही हुआ था कि भारत ने पूरी दुनिया को एक योग दिवस दिया है, भारत के आग्रह पर ही इसको मान्यता मिली थी, तब और उसके कुछ सालों के बाद तक भी इतना क्रेज़ रहता था लोगों में कि इस जगह पर योगा दिवस मनाया जा रहा है, चलो जी योग करेंगे जा कर के। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। आसपास साफ सफाई भी रखें, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ

सीढ़ी है और फल और सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करें, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर केवल आज के दिन ये हुआ है, पिछले कल भी एक कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो तो मैं दे देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण पर और नशे के अवैध प्रचलन पर रोक के चलते अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर 25 जून को निक्षय दिवस के रूप में जो होता है, निक्षय दिवस 25 जून को होता है, लेकिन 25 जून को ही शिक्षा बोर्ड सभागार धर्मशाला के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस ये जो आयोजन था ये स्वास्थ्य सामाजिक और कल्याण तथा विभाग तथा गुंजन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। जी हाँ, हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। कार्यशाला का के आयोजन का जो उद्देश्य था वो था नशे की मांग को कम करना, नशे के बारे में जागरूक किया जाना लोगों को और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना तथा नशा मुक्ति अभियान में सामान्य लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी सुनिश्चित करना। बहुत सारी बातें हमने वहाँ पर सीखी कि सिर्फ एक नशा जो तस्कर होते हैं उनको उनके गिरोहों को पकड़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, ये हमें जो है इस ये तभी ख़त्म हो पाएगा समाज से जबकि इसकी डिमांड कम होगी, यानी खुद से लोग आगे आएंगे और कहेंगे कि नहीं हमें नशा नहीं चाहिए। कार्यक्रम में और भी बातें करेंगे, अभी हमें हमारे पास और भी बहुत कुछ है हमारे बिटारे में, जैसा कि वो डाकिया लेकर आया था तो उस डाक में जो चिट्ठी आई हुई है वो पूरी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी मुझे। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनते हैं।

देखो कसम से, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

जी देखो, कसम से कसम से। और अगर ऐसा किसी ने कह दिया आपको, तो भाई किसी की कसम से भी आपको नशा ये नहीं लेना है, इसको ट्राई भी नहीं करना है। चाहे कितने ही सुंदर सा वो दिखता हो कि आपको चांदी के उसमें लपेट के दिया जाए, लेकिन फिर भी आपको नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, नो ना कहें, ना कहना सीखें। और मैं आपको बता दूं कि आज कांगड़ा सेवियर्स जो है एक संस्था है जो कि ब्लड डोनेट वगैरह करती है, और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। उसमें मैं भी गई थी, और वहाँ पर मैंने ये सीखा कि अगर आप ब्लड देना चाहते हैं किसी को, चाहे हो सकता है कि आपके घर में ही कोई कैजुअलिटी हो जाए और वहाँ पर आपको किसी को खून देना पड़े, तो भी ये देखा जाता है कि आपके ब्लड में कोई नशा वगैरह तो नहीं है। और अगर आप इस तरह का कोई भी काम कार्य करते होंगे, कोई किसी भी तरह का नशा लेते होंगे, तो वो आपको उसके लिए एलिजिबल ही नहीं मानते हैं, यानी कि आपका जो खून है वो किसी के भी काम नहीं आ सकता है। अगर चाहे आप कितना भी चाहेंगी, हाँ, आप किसी की हेल्प करें तो नहीं कर पाएंगे। तो नशा लेने वालों के लिए तो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जीवन में, लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात जो मुझे आज मैंने सीखी है, पता लगी है। वैसे तो पता होती है, सभी को पता होता है, लेकिन होता क्या है ना, कई बार हम अपनी जीवन की व्यस्तताओं में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो मुझे फिर से याद आ गया कि देखो, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो प्लीज़ आप किसी भी हाल में इस नशे से थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत दूर, मीलों दूर रहिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए अब कार्यक्रम में एक गीत और ले लेते हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हम आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के, क्षमा कीजिए, हम हिंदी समाचार सुनेंगे अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MTC-C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री लिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और

साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710277122 या फिर 7888819356। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, ये जो जनगणना है इसका हमने आपको पहले भी बताया था, जब पहली से लेकर के 15 जून तक स्व गणना हो रही थी तो हमने आपको उसको उसकी बेनिफिट ज़रूर बताए थे यहीं से इसी माइक से, कि क्या बेनिफिट आपको होंगे कि अगर आप खुद बखुद ही ऑनलाइन स्व गणना करवा लेते हैं अपनी। तो अब उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जब हमारे घर में वो जनगणना के लिए दो व्यक्ति आए, यंग लड़के थे वो, और घर पे हमें इतना समय था नहीं कि हम बैठ करके उनसे बात कर पाते, लेकिन क्योंकि हमने अपनी स्वगणना खुद ही कर ली थी और उसका नंबर भी हमारे पास था तो हमने उन्हें वो नंबर दे दिया और वो फटाफट बस पानी पी करके हमारे वहाँ से निकल गए आगे अपना काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास टारगेट होता है, वो बहुत सारे घर उन्होंने कवर करने होते हैं तो उन्हें अच्छा लगा और वो हमसे ये बोल कर भी गए कि आपने ये कर लिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन केवल हम ही नहीं थे करने वाले, उन्होंने कहा कुछ लोगों ने, दो चार लोग हैं जिन्होंने किया है, लेकिन बाकी सभी के घर में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और कुछ लोग जो हैं वो तो पूछ भी रहे थे कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, क्या करना चाहते, इससे ना

लोग अखबारें पढ़ते हैं और ना ही लोग, मुझे लगता है कि जानकारियों के साथ इस तरह से जुड़ते हैं। बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं। तो आप अपडेट रहिए, सुनते रहिए रेडियो कुंजन धर्मशाला।

मेरा फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना मेला फिल्म का, और हमने आपको बताया था कि मेला फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं ये गीत। तो जिस तरह से हमारी परंपरा है कि हम आपको बताते हैं, अपना फ़ोन नंबर 7018111701, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो मॉर्निंग वाले कार्यक्रम में भी हमें कॉल करते हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं। आइए जानते हैं वो कौन है, क्या कहना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और क्या बात है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, ज्योति जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है।
0: वीरेंद्र जी,
1: जी
0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, गुड इवनिंग धर्मशाला में।
1: गुड इवनिंग धर्मशाला में आपने मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद।
0: जी जी बताएं सर, क्या कहना चाहते हैं आज, क्या बात रखना चाहते हैं आप जनता तक?
1: जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है और मैं कांगड़ा सीवियर्स, एक ब्लड डोनेशन का जो ग्रुप है उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। तो अभी करीब 10 साल पहले हमने इस ग्रुप को शुरू किया था
0: जी।
1: किसी को रक्त की कमी ना हो। तो अच्छा। हम हिमाचल में करीब 11 ग्रुप्स हमारे ऑपरेट हैं, और कांगड़ा में कांगड़ा सीवियर्स करके, धर्मशाला में धर्मशाला सीवियर्स करके, ऐसे चंबा में चंबा सीवियर्स करके, ऐसे पालमपुर में, इस तरह से हमारे 11 ग्रुप्स पूरे हिमाचल में ऑपरेट करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जिसको भी रक्त की जरूरत होती है तो हमारे हमारे हमें फोन करता है, हमारे ग्रुप्स के लोगों को फोन करते हैं, तो हमारे ग्रुप से वॉलंटियर्स जाते हैं और डोनेट करके आते हैं वॉलंटियरली। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। तो आज हमारा एक स्पेशल डे था क्योंकि आज हमने अपना 10वीं वर्षगांठ जो थी आज हमने मनाई, 10th एनिवर्सरी
0: जी।
1: और इसमें आज हमने करीब 72 यूनिट जो थे आज हमने डोनेट किए। वैसे तो हमारा जो मोटो जिसमें हम काम करते हैं, कि हम स्वयं डोनेट करते हैं जाकर, जैसे कि मैंने स्वयं भी 57 टाइम्स डोनेट किया है। और हमारा दूसरा मोटो है कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि रक्तदान करना चाहिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, इससे फायदे ही होते हैं
0: जी।
1: तो उसी कड़ी में आज हमने क्या किया था कि हमने एनुअल डे अपना मना रहे थे, तो 10वीं वर्षगांठ थी। तो आज धर्मशाला के जो सम्माननीय SDM साहब हैं, आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए, और आज करीब 70 डोनेशन हमने यहाँ पे बनोई में, एक हमारा निजी होटल है लिटिल मैस्टिफ पंचिन करके, वहाँ पे हमने करीब 72 डोनेशन हमने की, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जो जितने डोनर्स थे हमने उनको फैसिलिटेट किया।
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: इस तरह से हम काम करते हैं
0: जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कांगड़ा सेवियर्स ही सबसे पहले बना था, या ये जो बाकी और जो हैं पालमपुर सेवियर, और आपने बताया ये और भी जगह जगह पर, तो सबसे पहले कांगड़ा सेवियर ही बना था ना?
1: जी ऐसा था, ये जो कांगड़ा सेवियर 2016 में बना था। मुझे लगा कि कांगड़ा सेवियर जो है टांडा को केटर कर सकता है, लेकिन बाकी एरिया के लिए क्या करें, तो वहां के भी फिर हमने उसके बाद पालमपुर सेवियर्स बनाया, फिर धर्मशाला बनाया, ऐसे करके सारे सेवियर्स ग्रुप बनते रहे। और जहाँ जहाँ पे वहाँ वहाँ के लोग उस ग्रुप के एडमिन हैं, जहाँ जहाँ पे वो फोन आते हैं तो हमारे लोग 1-to-1 जाते हैं और डोनेट करते हैं।
0: सर ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही लोगों की मदद की जाती है, उनसे कुछ लिया तो नहीं जाता है?
1: जी इसमें हमारे जो डोनर्स हैं वो अपना पेट्रोल या डीजल खर्च करके अपनी कार से या पैदल पहुँचते हैं
0: जी,
1: और डोनेट करते हैं और डोनेट करके वापिस आते हैं। वो उनसे एक भी पैसा या कोई भी इन टर्न वो कोई भी उनसे फेवर नहीं लेते,
0: क्योंकि
1: हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। तो वॉलंटियरली का मतलब ये कि हम बिना किसी निस्वार्थ भाव से ही काम कर रहे
0: हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि लोग कई बार ना इसी उसमें रह जाते हैं भुलावे में कि पता नहीं हम उनसे फेवर मतलब हम लेते हैं तो कहीं ये हमसे कुछ ले ना, क्योंकि
1: ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी चाहिए होगा वो हमसे संपर्क कर सकता है और हम कभी भी उनके लिए रक्त जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं।
0: जी जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है वीरेंद्र जी बातचीत करने के लिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से।
1: जी आपने वहां में बुलाया, धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपने सुना वीरेंद्र जी के साथ बातचीत की हमने, और अब करते हैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर सुनवाते हैं आपको एक और खूबसूरत गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे गीत। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा ये गीत 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

जब बात देश के भविष्य की हो तो भारत भी पीछे नहीं रहता है। हमारे देश में गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय मिल करके नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। आपको ये जान करके गर्व होगा कि इस अभियान के तहत अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को जागरूक किया जा चुका है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB जैसी हमारी एजेंसियां दिन रात सीमाओं पर और शहरों में इन तस्करों का नेटवर्क ध्वस्त कर रही हैं। परंतु सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, असली ताकत तो आप सब हैं जो इस वक्त मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं। आस पास में कोई अजीब हरकतें कर रहा है, अचानक गुमसुम रहने लग पड़ा है या चोरी छिपे किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिल रहा हो तो सतर्क हो जाइए। नशा करने वाले से नफरत मत कीजिए, क्योंकि वो तो एक बीमारी का शिकार है, उसे तो सही इलाज की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिए एक फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है और इस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। वैसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है वो तो है 1-4-4-4-6 और ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। चलिए इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक।

जी बिल्कुल, प्यार का सलाम लेते जाना, और यही प्यार है जो हमको आपस में बांध करके रखता है। चलिए दे देते हैं छोटा सा अंतराल, फिर करेंगे बातचीत।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888 89356। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नागिन फिल्म का ये गीत सुना अभी आपने सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार तथा साथियों की आवाजों में। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और बात करते हैं हम एक बार फिर से एक कड़वी सच्चाई की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 29 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में ड्रग का सेवन कर रहे हैं। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से होने वाली कमाई सीधे तौर पर हिंसा, हथियारों और की तस्करी और अपराध को बढ़ावा देती है। और नशा सिर्फ एक इंसान का शरीर खत्म नहीं करता बल्कि हंसते खेलते खेलते परिवारों और को मानसिक और आर्थिक रूप से तबाह कर देता है। हमारे देश में गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय मिलकर के नशा मुक्त भारत अभियान NMBA चला रहे हैं और इसके तहत अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिसमें कि 5 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के युवा शामिल हैं। और सरकार अवैध तस्करी को रोकने के लिए NCB जैसी एजेंसियों के माध्यम से कड़े कड़े कदम भी उठा रही है। एक बार फिर से हम आपको कह देना चाहते हैं कि नशा करने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित हैं। उन्हें हमारी नफरत की नहीं बल्कि सहानुभूति, सही इलाज और पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। तो इस ओर तुरंत ध्यान दीजिए, पहले तो कोशिश कीजिए कि वो इस ओर फंसे ही नहीं, और अगर कहीं भूले भटके चले भी गए हैं तो उन्हें वापस लाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो कि कुछ ही पलों में आपके रेडियो सेट्स पर प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के राज्यपाल से भेंट, दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस के मौके पर हुए कई जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाई गई नशा विरोधी शपथ। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज से शुरू। और शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% का वैधानिक हिस्सा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित लंबित पड़ी देनदारियों के जल्द निपटारे को लेकर भी विचार विमर्श किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जी राम जी योजना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के हितों को दांव पर लगा रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष से एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे जैसी सामाजिक बुराई के नाश के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एंटी चिट्टा जागरूकता रैली को भी रवाना किया गया। इस बीच नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे को लेकर विशेष अभियान चलाया और वाकाथोन के जरिए, बहुत सारे सेमिनार्स के जरिए और यहाँ तक कि कानून भी जो है बदला गया हिमाचल, और इसको बड़े सख्ती से किया गया। पूरे प्रदेश के पंचायतों में मैपिंग की गई है कि कहाँ पर इसका ज्यादा मेनेंस है। इसमें जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल पाए गए, उन सबके ऊपर कड़ा जो है संज्ञान लेकर कड़े फैसले लिए गए, उनको नौकरियों से भी निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में

0: को लेकर सरकार चिंतित है और खाली चिंता ही नहीं बल्कि इसको कैसे मतलब इस मनस को दूर किया जाए इसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
1: एक अन्य कार्यक्रम में कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी।
2: दो चीजें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस से नंबर दिए जाएंगे।
1: इस अवसर पर प्रदेश के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार मां शूलिनी की पालकी का विधिवत स्वागत किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। धनीराम शांडिल ने कहा कि मां शूलिनी को समर्पित ये उत्सव समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। शूलिनी मेले के सफल आयोजन के लिए सोलन जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याएं, खेल व अन्य गतिविधियाँ आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शिमला जिले में रामपुर क्षेत्र के उर्मण में आज एक पिकअप के गहरी खाई में गिर जाने से मां और बेटे सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई। शिमला पुलिस ने इस हादसे की पुष्टि की है। मृतक आनी तहसील के कवाणो व रामपुर तहसील के छलटा पाठ और शरनाल गांव से संबंधित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि अधिग्रहण का करीब 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी भूमि अधिग्रहण अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा अब जल्द ही अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांगड़ा पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत व पुनर्वास की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन सहित अब तक करीब 2,200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावितों को वितरित की गई है।
3: अभी तक का बजट इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट का है, वो जो वन टाइम सेटलमेंट में अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ के आसपास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और जो अलग कैटेगरीज में फैमिलीज आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं, वो 942 के आसपास की संख्या जो थी वो पहले थी, अब उसमें जो है वो कुछ काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, उसको लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर R&R के लेवल पे जो है देखा जाना है और जब वो क्लेम्स सारे सेटल हो जाएंगे उसके बाद एक्चुअल फिगर जो है वो उसके हिसाब से आगे जो कंपनसेशन का है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
1: प्रदेश भर में आगामी रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पिछले कल कसौली के नेरीकला में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा पर मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि महिलाएं सरकार के वादों और वास्तविकता के बीच का अंतर भली भांति समझ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को कसौली विधानसभा क्षेत्र की 5 पंचायतों की महिलाओं तक ही सीमित कर दिया है और इलाके की शेष पंचायतों की महिलाओं को इससे वंचित रखा जा रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज शिमला जिले के सुन्नी में पौधरोपण किया गया। पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और दोपहर बाद से कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा हुई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस वर्षा से किसानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पंजाब के राज्यपाल से भेंट, दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस के मौके पर हुए कई जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाई गई नशा विरोधी शपथ। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज से शुरू। और शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 9:20 पर। नमस्कार
4: जी श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय के अभाव के चलते अब हम आपको सुनवाएंगे एक खूबसूरत सा गीत और इसी के साथ ज्योति पठानिया को भी दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे मैं किसी और दिन इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आ बसंती, अब चले।
1: मिलते हैं अपने हाथ हाथों। वो अब धर्म कर्म का भजन सुनाएंगे।
0: मैं भजन वजन नहीं।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888891936। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सेम्भियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
10: मेरा
11: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
10: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित, मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो। मॉर्निंग माँ।
1: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मां, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
0: समझियो के यहाँ पे 4 कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए 1 कप चाय लाना।
1: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: वाह, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
1: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा, तो
1: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
1: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: सर, मेरा
10: रिजन कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

हमें आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

107.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?

0: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
1: देना,
0: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
1: चलो ये भी अच्छा है।
2: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
3: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
4: क्यों
3: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
5: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
6: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
7: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
8: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
9: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।
9: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार।
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।